0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है।

सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

0: कायदे से, जी हाँ, एकदम कायदे से अब मोहब्बत हुई है क्योंकि आप जुड़े हैं मेरे साथ। 10:09 और 14 सेकंड स्टूडियो की घड़ी एकदम सही समय बता रही है और नॉनस्टॉप गपशप लेकर चैनिका हाजिर। और जब तक एक दूसरे के साथ जुड़ाव ना हो तब तक पता कैसे चले कि सच में दिल में मोहब्बत है। और अब जब आप आ ही गए हैं मेरे इस महफिल का हिस्सा बनने, तो फिर चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और सबसे पहले आज का पहला सेगमेंट आप सबके लिए, ये एकदम फटाक से
1: आज के दिन।
0: चलिए जान लेते हैं आज के दिन की क्या खासियत है। आज है 24 मई और आज ही के दिन 1543 में पोलैंड के खगोलविद निकोलस कोपरनिकस का निधन हुआ था, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया हमको सब लोगों को, पूरी दुनिया को। उन्होंने ये बताया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ना कि सूरज हमारी तरफ चक्कर लगाते हैं। उससे पहले हम सब यही सोचते थे। जी हाँ, ये जो मानवता है किस तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे करके आगे बढ़ी और इसने अपना ज्ञान बढ़ाया हम सब जानते हैं। तो पहले यही विचार हुआ करता था सबका कि भाई ये जो सूरज है ये हमारे तरफ, हमारी चारों तरफ घूम रहा है। तो कोपरनिकस ने दुनिया को बताया कि नहीं, सभी प्लैनेट्स जो हैं, सभी जो ग्रह हैं वो सूरज के चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी भी अपनी जगह पर घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है। और इसी वजह से विभिन्न जो मौसम है, अलग अलग जो मौसम है वो आते जाते रहते हैं। सन 1875 में सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी आज ही के दिन। और यही कॉलेज आगे चलकर सन 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना और यह आज़ादी के बाद देश के चार केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक था। आपको पता है कि पहली एसी वाली ट्रेन, वातानुकूलित यात्री ट्रेन आज ही के दिन चली अमेरिका में 1931 में बाल्टिमोर ओहायो मार्ग पर यह ट्रेन चलाई गई थी। 1915 में आज ही के दिन थॉमस एल्वा एडिसन ने टेलीस्क्राइब का आविष्कार किया था। सन 1986 में आज ही के दिन मार्गरेट थैचर इजराइल का दौरा करने वाली ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री बनी थी।
1: आज के दिन।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ऐसी बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: सुन रहे हैं आप जैनिका के साथ एफएम रेनबो कोलकाता, और नॉनस्टॉप बातें तो हो ही रही, लेकिन उससे ज़्यादा जैसे कि है हमारा रोज़ का वादा, हम आपको सुनवाते हैं ज़्यादा और बेहद खूबसूरत हिंदी फिल्मी गाने, बातों से ज़्यादा। हाँ, लेकिन छुटपुट बातें भी तो होती रहनी चाहिए, नहीं तो फिर मज़ा कैसे आएगा। तो ये जो बातचीत का सिलसिला है ये जारी रहे, और मैं आपको बताऊं कि आज कौन से ऐसे लोग हैं, खास व्यक्तित्व हैं, जो मना रहे हैं अपना जन्मदिन। आज जयंती है हम सबके बेहद प्रिय और वरेण्य कवि, विद्रोही कवि जिन्हें हम कहते हैं, काजी नजरुल इस्लाम का। आज हम मांगला तिथि के हिसाब से नहीं बल्कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जन्म तिथि मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं काजी नजरुल इस्लाम की। और इसके अलावा आज जन्मदिन है बछेंद्री पाल का। हम सब जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने भारत का परचम ऊंचा लहराया, भारत की पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर समिट किया था बछेंद्री पाल, उनका भी आज बर्थडे है। इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत गीत रचने वाले प्रसिद्ध संगीतकार राजेश रोशन भी आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, और साथ ही जीत गांगुली का भी आज हैप्पी बर्थडे है, और प्रसिद्ध जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई की भी आज ही सालगिरह मनाई जा रही है। तो आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और दो दो संगीतकारों का आज जन्म हुआ तो इस खुशी के मौके पर अभी तो फिलहाल दोनों का एक एक गीत तो कार्यक्रम में शामिल करना बनता है, आप क्या कहते हैं। तो चलिए ना, बैक टू बैक सुनते हैं दो गाने, एक राजेश रोशन का और दूसरा जीत का। फिलहाल तो आप सबके लिए काइट्स का ये गीत के की आवाज़ में सुनते रहें एफएम रेनबो नॉनस्टॉप गपशप।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर।

राज रिबूट से एक गीत आपको सुनवाया हमने अभी। कौसर मुनीर ने यह गाना लिखा था और जीत गांगुली का संगीत था। और आवाज के बारे में क्या ही मैं कहूं, हम सब जानते हैं अरिजीत सिंह की आवाज। अब चलिए आपको बताएं मौसम का ताजा तरीन हाल, जो हमें मौसम विभाग द्वारा पता चला है। मालूम पड़ता है कि आने वाले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। और आज सुबह का जैसा हाल था, अभी भी शायद बादल ही छाए हैं आसमान में। तो ये मौसम विभाग भी बता रहा है कि आने वाले 24 घंटों में आंशिक तौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और संभावना है कुछ एक हिस्सों में, कोलकाता और कोलकाता शहर के आसपास के कुछ एक इलाकों में, कि गरज के साथ कुछ बारिश की संभावना बने, पॉसिबिलिटी है ऐसी। और इसके अलावा अगर बीते दिन के मौसम के बारे में हम बात करना चाहें तो मैं आपको बताऊं कि अधिकतम तापमान, अरे बाप रे बाप, 35.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान रहा 29.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास। बाप रे, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, क्या ही किया जाए। बारिश चाहते हैं हम कि हो जाए, लेकिन हो ही नहीं रही। बीच बीच में होनी चाहिए ना, नॉर्थ वेस्टर्स आने चाहिए। कालबोशखी पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ के चली गई हमसे रूट कर। पहले तो कुछ एक दिन पहले भी तो आ रही थी ना मिलने, लेकिन आ नहीं रही। और अभी जो हमारे मछुआरे भाई हैं उनके लिए भी किसी भी तरह की चेतावनी नहीं है, वो एकदम बेझिझक जाएं अपने काम पर। और ये एकदम ताज़ा जानकारी मौसम विभाग द्वारा आपके लिए। और जैसे कि मैंने कहा, जो बारिश है वो एक ऐसी कुड़ी है जो गुम हो गई है, मिल नहीं रही हमें, ढूंढ रहे हैं हम बहुत दिनों से। अब आप मनाइए, मैं भी मनाऊं कि मिल जाए बस जल्द ही।

सी बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर, FM रेनबो।

0: अब गपशप में अब बारी है एक चुटकी नुस्खे की, और आज हम आपको बताएंगे गर्मियों के सुपर फूड सत्तू के बारे में। सत्तू क्या होता है हम सबको पता है, मांगला में हम छातू कहते हैं, और ये भुने हुए चने का आटा है। हम जानते हैं फिर भी मैं बताऊं कि गर्मियों में पेट के लिए वरदान है ये, और शरीर को तुरंत ठंडक देता है और लंबे समय तक आपकी जो एनर्जी है वो बनाए रखता है। तो गर्मियों के मौसम में कैसे पिया जाए सत्तू? एक गिलास ठंडे पानी में 2 चम्मच सत्तू, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, काला नमक, नींबू का रस और बारीक कटा हुआ पुदीना मिलाकर नमकीन शरबत बनाएं, और इसे सुबह खाली पेट या दोपहर में पीने से लू नहीं लगती। जैसे हमारे यहाँ तो लू का मौसम नहीं, उमस ज़्यादा है, तो इतनी गर्मी में भी जब आपको इतनी अधिक डिहाइड्रेशन की समस्या होगी या फिर पेट जो है वो गुड़गुड़ करेगा, तब आपके पेट को ठंडा रखने में ये बहुत असरदार हो सकता है। और एक शेफ़ है ना, रणवीर ब्रार, वो कहते हैं कि 2 बेस मिक्सचर अगर आपके रेडी हैं, एक तो जीरा पाउडर और दूसरी गुड़ की चाशनी, तो आप इससे नमकीन और मीठा दोनों तरह का सत्तू बना सकते हैं। गुड़ की चाशनी बनाने के लिए 1 पैन में पानी, 1 कप गुड़ और 5-6 कुटी हुई हरी इलायची डालें। इसे धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक उबालें, जब तक कि गुड़ जो है वो पूरी तरह से पिघल न जाए। फिर छान कर ठंडा होने के लिए उसे रख दें। और जो भुना हुआ जीरा मिक्सचर है ना नमकीन सत्तू के लिए, उसके लिए आप 1 पैन में स्वाद के अनुसार सादा नमक और 1 बड़ा चम्मच साबुत जीरा डालें। धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए इसके सूखा रोस्ट करें, और उसके बाद ये जो रोस्टेड जीरा है और नमक है उसको चकले पर बेलन की मदद से दरदरा कूट लें। अब इसमें 1/2 बड़ा चम्मच काला नमक डालें और मिक्स करके रख लें। अब इस स्टोर किया हुआ ये जो आपका जो मिक्सचर है और जो जैगरी सिरप है, आप कोई भी इस्तेमाल कीजिए, और बस ठंडे पानी वाले ग्लास में सत्तू और आपके पसंद का मिक्सचर मिलाइए, आनंद लीजिए और अपने आप को ठंडा रखिए, हेल्थी रखिए, और फिर आपकी जो ताजगी है ना वो सबको दिखाई देगी। आपका जो मूड है वो एकदम चंगा रहेगा, आप गुस्सा नहीं होंगे।
1: एक चुटकी नुस्खे

0: ആകാശവാണി അറ്റ് 90.
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप. नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर. नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर. एफएम रेनबो पर
2: चैनिका के साथ सुन रहे हैं आप एफएम रेनबो कोलकाता नॉन स्टॉप गपशप पर. बस एकदम अंतिम पड़ाव की तरह हम आगे आगे धीरे धीरे बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं. लेकिन बीच बीच पर छुटपुट बातें भी तो होनी चाहिए. केवल म्यूजिक सुनने से चलेगा क्या? अच्छा, क्या आप जानते हैं कि आज के दिन यानी 24 मई को हर साल कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है. इस दिन के आयोजन का मकसद उन देशों में एकता कायम करना है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे. रानी विक्टोरिया की जयंती के तौर पर यह दिवस मनाया जाता है. 24 मई 1819 को महारानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था और राष्ट्रमंडल दिवस का आयोजन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि उन सभी देशों में होता है जो राष्ट्रमंडल देशों की यानी कॉमनवेल्थ देशों की सूची में शामिल है. और इस दिन को मनाने का मकसद एकता और मानवता को स्थापित करना है. गौरतलब है कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस 54 स्वतंत्र देशों का एक समूह है और इन देशों में अधिकांशतः वो देश हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे थे. राष्ट्रमंडल संस्था का मुख्यालय जो है वो लंदन में है और इन देशों में मोजाम्बिक और रवांडा ऐसे देश हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कॉमनवेल्थ जो है वो ज्वाइन किया है. और ये दिन जैसे कि मैंने कहा सभी मनाते हैं और एक कह सकते हैं कि एक सूत्र है ऐसे देशों को आपस में बांधने का. और मुझे लगा कि आपके साथ मैं ये साझा करूं. आज मनाया जा रहा है 24 मई को कॉमनवेल्थ डे. फिलहाल चलिए आप सबको मैं अगले गीत की तरफ लेकर चलूं आप सबके लिए. अरिजीत सिंह की आवाज और आप लोग सुन रहे हैं नॉन स्टॉप गपशप ओनली ऑन एफएम रेनबो कोलकाता.

0: आकाशवाणी एट 90।
1: सच में बहुत गर्व होता है कि इन बेमिसाल 90 सालों के हम भी हिस्सेदार हैं। और जैसा कि थोड़ी देर पहले उस गीत में कहा कि न चाहिए कुछ तुमसे ज़्यादा कुछ कम नहीं, बड़ा ही खूबसूरत गाना और बड़ी खूबसूरती से इरशाद कामिल ने लिखा है। और हमारा ये जो रिश्ता है मेरा और आपका, अगर आप नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, जो तुम ना हो तो होंगे हम नहीं, एकदम सही सही हमारे बारे में इस गाने ने एकदम बयां किया। और अब एकदम अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं आप सबके लिए कार्यक्रम का अंतिम सेगमेंट
2: कोलकाता कल्चर।

0: शेक्सपियर सरणी स्थित एक ऑडिटोरियम में आज शाम 7 बजे से टैगोर को ट्रिब्यूट स्वरूप एक कॉन्सर्ट का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा भवानीपुर स्थित एक आर्ट एंड कम्युनिटी सेंटर पर कैंडल मेकिंग वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है शाम 5 बजे से, और आज इसका दूसरा दिन है। आप चाहें तो इन इवेंट्स का हिस्सा बन सकते हैं।
1: कोलकाता कल्चर।
0: और अब फाइनली मैं कहती हूँ टाटा बाय बाय। नॉनस्टॉप गपशप लेकर हाजिर थी चैनिका, और अब आप सबके हवाले किए जाती हूँ आज के कार्यक्रम का ये अंतिम गाना। आप लोग लेकिन बने रहिए एफएम रेनबो कोलकाता पर, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं आपका इंतजार।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर।
1: 107 FM रेनबो पर तीन का तड़का, आपका स्वागत है डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट में, जो हर दोपहर 3 बजे आप तक पहुंचता है। बॉलीवुड मैटिनी शो जो आपको जोड़ता है सिनेमा की चमकती दुनिया से, उसकी कहानियां, नई रिलीजेस और बहुत सी दिलचस्प बातें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ 4 बजे तक इस एक्सक्लूसिव एंटरटेनमेंट चंक के साथ, जहां होंगी मनोरंजन की ढेर सारी खबरें और रंगारंग झलकियां। फिलहाल 3:07 आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है तीन का तड़का और मैं हूं आपके साथ संचिता। मिथुन अरिजीत सिंह और आकांक्षा शर्मा की आवाज।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर टीम का तड़का।

0: 107 FM रेनबो पर तीन का तड़का शुरू करते हैं। हाल ही में बॉबी देओल की फिल्म बंदर का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसमें बॉबी के अलावा एक्ट्रेस सपना पब्बी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। सपना का इंटेंस अवतार और एक्टिंग खूब पसंद की जा रही है। सपना जो है पब्बी पिछले कई साल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा है और अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। ये इनसाइड इज ऑफ फॉर मोर शॉट्स प्लीज जैसे वेब सीरीज का हिस्सा भी रही है और अब एक बार फिर बंदर से चर्चे में आ रही है। इनका दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत से भी कनेक्शन रहा है। सपना पब्बी एक ब्रिटिश एक्ट्रेस और मॉडल रही। ये लंदन में पली बड़ी। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2013 में टीवी से की। इनका पहला शो घर आजा परदेसी था और इसके बाद ये अनिल कपूर के साथ उनके शो 24 में नजर आई। उसमें उन्होंने अनिल कपूर की बेटी का रोल प्ले किया था। 3:14 और 13 सेकंड 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम तीन का तड़का संजता के साथ। सलमान की मातृभूमि पर असमंजस। जी हां, गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प पर बनी सलमान खान की फिल्म मातृभूमि में वॉर रेस्ट इन पीस काफी समय से अटकी हुई है। ये फिल्म 17 अप्रैल को ही रिलीज होने वाली थी। अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म के टीजर ने खूब चर्चा बटोरी थी। यहां तक कि पड़ोसी मुल्क चीन में भी इसको लेकर खलबली मच गई थी। मेकर्स ने अरिजीत सिंह की आवाज में टाइटल ट्रैक सहित 4 गाने भी रिलीज किए थे, लेकिन दिलचस्प ये है कि फिल्म कब रिलीज होगी इसको लेकर अब कोई चर्चा नहीं। खबर ये है कि इस बीच 2020 में हुई भारत चीन संघर्ष पर एक और फिल्म बनाने की तैयारी थी, लेकिन वो भी डिब्बा बंद हो गई है। और ऐसा इसलिए है कि हिंदुस्तानी सिनेमाई पर्दे पर चीन की बुराई नहीं कर सकते और कथित तौर पर सेंसर बोर्ड इसको लेकर बहुत सख्त है। जी हां, आगे बढ़ेंगे गीत के साथ, लेकिन उससे पहले
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: वन ओ सेवन एफ एम रेनबो पर तीन का तड़का।

अरिजीत सिंह, तुलसी कुमार और न्यूमन पिंटो की आवाजों में है दिल के पास फिल्म से। जी हाँ, दिल के पास ये गीत है वजह तुम हो फिल्म। राजेंद्र कृष्ण ने लिखा, अभिजीत भगानी ने इसे संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम 3 का तड़का।

इस खूबसूरत रीमेक सॉन्ग के बाद कार्यक्रम तीन का तड़का 3:21 आप जुड़े हुए हैं संचिता के साथ। आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम को लेकर। मई 2026 के दौरान हिंदी फिल्मों और वेब कंटेंट की ओटीटी रिलीज को लेकर नई रणनीतियों की चर्चा तेज हो रही है। कई निर्माताओं ने थिएटर रिलीज के साथ डिजिटल स्ट्रीमिंग को संतुलित करने पर जोर दिया। इंडस्ट्री विशेषज्ञों के अनुसार दर्शकों की बदलती पसंद को देखते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अब बॉलीवुड की कमाई का अहम हिस्सा बन चुका है। इस सप्ताह कई हिंदी कॉन्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी हैं और अच्छा प्रदर्शन भी किया है, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि डिजिटल मनोरंजन का प्रभाव भविष्य में और बढ़ने वाला है। मई के सप्ताह में दीपिका पादुकोण वैश्विक मंचों पर अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के लिए अपनी भागीदारी को लेकर खबरों में बनी हुई हैं। मनोरंजन विशेषज्ञों का कहना है कि दीपिका लगातार भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों और फैशन अपीयरेंस को लेकर काफी चर्चा हुई। फिल्म इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि ऐसी वैश्विक मौजूदगी भारतीय अभिनेत्रियों के लिए नए अवसर पैदा करती है और बॉलीवुड को विश्व स्तर पर अधिक प्रतिष्ठा दिलाती है। अब बात करते हैं किंग खान यानी कि एसआरके की। इस हफ्ते 2026 मई के दौरान शाहरुख खान की आगामी फिल्म और प्रोडक्शन योजनाओं को लेकर बॉलीवुड में चर्चा तेज है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार अभिनेता बड़े पैमाने की एक्शन और ड्रामा फिल्मों पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों के बीच संभावित नए संजोग और कास्टिंग को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। ट्रेंड विश्लेषकों का मानना है कि शाहरुख की फिल्मों का प्रभाव केवल बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनकी परियोजनाएं इंडस्ट्री के व्यावसायिक माहौल को भी प्रभावित करता है। इस कारण उनकी हर नई घोषणा बॉलीवुड के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। 3:24 आप जिस चंग के साथ, जिस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं वो है तीन का तड़का। फिलहाल अरिजीत सिंह की ही आवाज है, फिल्म का नाम डंकी। इरशाद कामिल ने बोल लिखे इस गीत के और इसे संगीतबद्ध किया प्रीतम ने।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का,
1: 107 FM रेनबो पर तीन का तड़का, 3:28 और 41 सेकंड। आमिर खान की नई फिल्मों को लेकर भी उत्साह बना हुआ है। तीसरे सप्ताह में आमिर खान की आगामी फिल्म परियोजनाओं को लेकर चर्चाएं जारी हैं। खबरों के अनुसार अभिनेता एक कंटेंट ड्रिवन विषय पर काम कर रहे हैं जिसमें सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं को प्रमुखता दी जा रही है। ट्रेंड सर्कल में माना जा रहा है कि आमिर की अगली फिल्म बॉलीवुड के लिए एक महत्वपूर्ण रिलीज साबित हो सकती है। दर्शकों के बीच भी उनके नए प्रोजेक्ट्स को लेकर उत्सुकता बनी हुई है क्योंकि आमिर लंबे समय से अलग तरह की कहानियों को बड़े पर्दे पर लाने के लिए पहचाने जाते हैं। वहीं मई 2026 के इस हफ्ते के दौरान बॉबी देओल की फिल्म और उनके करियर के नए चरण को लेकर बॉलीवुड में चर्चाएं जारी है। हाल के वर्षों में अभिनेता ने गंभीर और प्रभावशाली किरदारों से अपनी नई पहचान तो बना ही ली है। इंडस्ट्री विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत स्क्रिप्ट, चयन और अलग भूमिकाओं ने उन्हें नई पीढ़ी के दर्शकों के बीच भी लोकप्रिय बना दिया है। सोशल मीडिया पर उनकी आगामी परियोजनाओं को लेकर फैंस का उत्साह देखा जा रहा है। उससे ये संकेत मिलता है कि बॉबी देओल का दूसरा करियर चरण काफी सफल साबित हुआ। बॉलीवुड संगीत में इंडी और फ्यूजन ट्रेंड का एक प्रभाव देखा जा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे गीत के साथ, जो है चेन्नई एक्सप्रेस से चिन्मय श्रीपदा और गोपी सुंदर की आवाज। अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे इस गीत को और इसे संगीतबद्ध किया विशाल शेखर ने। कार्यक्रम है तीन का तड़का, 3:30

0: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: परियोजना प्रस्तुति 107 एफएम रेनबो के अंतर्गत परियोजना प्रस्तुति में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। पीएमएवाई के तहत देश के पात्र नागरिकों को पक्का घर बनाने या खरीदने के लिए 1.5 यानी कि 1.5 लाख से 2.5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। नवीनतम जानकारी के अनुसार इसके नए संस्करण पीएम आवास योजना 2.0 के तहत लाभार्थियों की सूचना जारी की जा रही है और किश्तें सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। भारत सरकार का सपना है कि देश के हर गरीब और जरूरतमंद परिवार के पास अपना पक्का घर हो, इसी सोच के साथ शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना आज करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव ला चुकी है। साल 2026 में भी इस योजना के तहत नए लाभार्थियों की सूची जारी की जा रही है, जिसे पीएम आवास योजना लिस्ट 2026 कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, बेघर और कच्चे मकान के रहने वाले लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना। इस योजना के अंतर्गत सरकार लाभार्थियों को घर बनाने के लिए या फिर खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। सहायता राशि अलग अलग श्रेणियों के घटक जैसे बीएलसी के तहत मकान बनाने के लिए 1.5 लाख से 2.5 लाख तक की सीधी सरकारी मदद मिल सकती है। रन सब्सिडी की अगर बात करें सीएलएसएस, यदि आप होम लोन लेते हैं तो 6 लाख तक के लोन पर 6.50% तक की ब्याज सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आय सीमा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए वार्षिक आय 3 लाख तक या फिर निम्न आय वर्ग एलआईजी के लिए 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए। संपत्ति की अगर बात करें तो परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पूरे देश में कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। लाभार्थी सूची में अपना नाम आप कैसे देखेंगे? आप घर बैठे आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से सूची में अपना नाम जांच सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई इस योजना को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक पीएमएवाईजी यानी कि ग्रामीण और पीएमएवाईयू यानी कि अर्बन या शहरी। दोनों ही श्रेणियों के लिए हर साल नई सूची जारी की जाती है जिसमें पात्र लाभार्थियों के नाम शामिल होते हैं। 2026 में जारी होने वाली पीएम आवास योजना लिस्ट भी इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। पीएम आवास योजना ग्रामीण वेबसाइट पर जाएं, स्टेक होल्डर सेक्शन में जाकर IAY/PMAYG बेनिफिशियरी पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर दर्ज करके सूची देखें। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो PMAY शहरी वेबसाइट पर जाकर बेनिफिशियरी लिस्ट विकल्प का उपयोग करें। हर साल लाखों लोग इस योजना में आवेदन करते हैं लेकिन लाभ उन्हीं को मिलता है जिनका नाम सरकारी सूची में होता है। 2026 की सूची इसलिए भी खास है क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को आवास की सुविधा मिल सके। अगर आपका नाम इस लिस्ट में आ जाता है तो आपको घर बनाने के लिए सरकारी सहायता राशि सीधी DBT के माध्यम से पैसा पारदर्शी और सरल प्रक्रिया का लाभ मिलता है। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर। अधिक जानकारी के लिए नई लिस्ट की जांच और फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप अपने स्थानीय ग्राम पंचायत कार्यालय या नगर पालिका नगर निगम से भी संपर्क कर सकते हैं। परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में।
0: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

माय नेम इज खान से शंकर महादेवन और सूरज जगन को आप सुन रहे थे, और इसके बाद हम आते हैं जिस कार्यक्रम के साथ जुड़ने, वो है तीन का तड़का। तीन का तड़का 3:46 और 52 सेकंड। और परियोजना प्रस्तुति से पहले हम जिस विषय को लेकर बात कर रहे थे, करण जौहर की नई फिल्म घोषणाओं को लेकर भी चर्चे में है। 2026 इस हफ्ते मई के दौरान करण जौहर एक बार फिर अपनी नई प्रोडक्शन योजनाओं को लेकर सुर्खियों में बने हुए। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी कंपनी युवा कलाकारों और नई कहानियों पर आधारित फिल्मों को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। बॉलीवुड ट्रेंड विशेषज्ञों का मानना है कि करण जौहर की फिल्म का युवा दर्शकों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। सोशल मीडिया पर उनके संभावित प्रोजेक्ट्स और स्टार कास्ट को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। निर्माता के रूप में उनकी रणनीति बॉलीवुड के बदलते रुझानों को दर्शाती है। और क्या बात कर रही थी, बॉलीवुड संगीत में इंडी और फ्यूजन ट्रेंड का प्रभाव चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। 2026 मई के इस हफ्ते, इस सप्ताह में बॉलीवुड संगीत जगत में इंडी और फ्यूजन संगीत को लेकर चर्चा बढ़ी। हाल ही में रिलीज हुई कुछ फिल्मी गानों में पारंपरिक धुनों के साथ आधुनिक बीट्स का मिश्रण देखने को मिल रहा है। संगीत विशेषज्ञों का मानना है कि युवा दर्शकों की पसंद को देखते हुए निर्माता अब अलग अलग संगीत शैलियों को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गानों की लोकप्रियता भी फिल्मों के प्रमोशन का बड़ा जरिया बन चुका है, और जिससे किसी फिल्म की शुरुआती चर्चा काफी हद तक अपने संगीत पर निर्भर

होने लगी है। रणबीर कपूर की आगामी फिल्मों को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है। हाँ, एनिमल के बाद अब क्या, इस हफ्ते में रणबीर कपूर की आगामी परियोजनाओं को लेकर बॉलीवुड गलियारों में काफी चर्चा है। ट्रेंड रिपोर्ट्स के अनुसार अभिनेता बड़े बजट की फिल्म और अलग अलग शैलियों में काम करने की योजना बना रहे हैं। देखा जाए तो प्रशंसकों के बीच उनके एक नए किरदार और संभावित लुक्स को लेकर बहुत ही उत्सुकता दिखाई दे रही है, क्योंकि वो एक अजीब से लुक में घूम रहे हैं। फिल्म विशेषज्ञों का कहना है कि रणबीर की पिछली सफल फिल्म ने उनकी स्टार पावर को और भी मजबूत कर दिया है। यही कारण है कि उनकी हर नई फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन जाती है। महिला केंद्रित फिल्मों को लेकर बॉलीवुड में एक ट्रेंड तो चल ही रहा है। इस दौरान इंडस्ट्री में महिला केंद्रित फिल्मों को लेकर सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। कई निर्माता ऐसी कहानियों पर काम करना चाह रहे हैं जिसमें महिला पात्र कहानी का मुख्य आधार हो। विशेषज्ञों का मानना है कि दर्शकों की बदलती पसंद ने बॉलीवुड को अधिक सशक्त महिला किरदार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया है। हाल के वर्षों में अगर हम देखें, ऐसी फिल्म सफलता ने यह साबित किया है कि मजबूत कंटेंट और प्रभावशाली अभिनय दर्शकों को आकर्षित कर सकता है। इसमें अभिनेत्रियों को भी विविध भूमिकाएं मिल रही हैं और बड़े बजट की प्रोजेक्ट्स में वो काम कर पा रही हैं। आगे बढ़ेंगे जिस गीत के साथ, कार्यक्रम है तीन का तड़का 107 एफएम रेनबो पर। अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज, तू झूठी मैं मकार, अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे इस गीत के बोल और प्रीतम ने इसे संगीतबद्ध किया।

107 FM रेनबो पर कार्यक्रम तीन का तड़का। तीन का तड़का में आपके साथ हूं मैं संचिता। अनुष्का शर्मा की नई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज का टीजर जारी है। तीसरे सप्ताह में अनुष्का शर्मा की आगामी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज परियोजना का टीजर सामने आने के बाद बॉलीवुड और ओटीटी जगत में उत्साह बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये जो प्रोजेक्ट है पुलिस और अपराध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। लंबे समय बाद अनुष्का ने नए कॉन्टेंट को लेकर दर्शकों के उत्सुकता दिखाई दी, दर्शकों के बीच आ रही है। सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने टीजर की शैली और गंभीर टोन की चर्चा की और ओटीटी पर बहुप्रतीक्षित रिलीज इसे माना जा रहा है। वहीं फरहान अख्तर और रणवीर सिंह की डॉन 3 को लेकर चर्चाएं आ रही हैं। फिल्म की कास्टिंग, निर्माण प्रक्रिया और प्रोडक्शन में जुड़े मुद्दों ने मनोरंजन जगत का ध्यान आकर्षित किया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फिल्म से संबंधित विवादों और इंडस्ट्री स्तर पर चर्चा के बावजूद दर्शकों में इसकी रिलीज को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। ट्रेंड जो विशेषज्ञ हैं वो विश्लेषक कुछ ऐसा मान रहे हैं कि डॉन फ्रेंचाइजी की लोकप्रियता इस फिल्म को बॉलीवुड की महत्वपूर्ण रिलीजों में शामिल कर सकती है। इस सप्ताह के अंत तक सप्ताह निर्माता नमित मल्होत्रा की महत्वाकांक्षी फिल्म रामायण की संभावित रिलीज डेट को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म की रिलीज को त्योहारों के आसपास रणनीतिक रूप से तय करने पर विचार किया जा रहा है। फिल्म में बड़े सितारों की मौजूदगी और विशाल पैमाने के कारण इसे बॉलीवुड की सबसे चर्चित आगामी परियोजनाओं में गिना जा रहा है। ट्रेंड विशेषज्ञों का मानना है कि ये फिल्म पौराणिक विषयों की लोकप्रियता को नए स्तर पर लाकर रख देगी। और आखिरी चंक में जून 2026 की रिलीज है जवानी तो इश्क होना है को लेकर बड़ा उत्साह। काफी चर्चे में है वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े अभिनीत इस फिल्म का ट्रेलर मई के तीसरे सप्ताह में सामने आया, जिसमें सोशल मीडिया पर अच्छी प्रतिक्रिया हासिल की। फिल्म रोमांस और कॉमेडी के मिश्रण के साथ पारिवारिक मनोरंजन पर आधारित बनाई जा रही है। ट्रेलर लॉन्च से जुड़ी कुछ तकनीकी और म्यूजिक का राइट्स विवाद की चर्चाएं भी खबरों में आ रही है। हालांकि निर्माताओं ने कहा है कि सभी मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं। फिलहाल यहीं तक, आगे बढ़ेंगे आखिरी गीत के साथ, लेकिन फिर मिलेंगे आपको आपसे लेकर कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स एफएम गोल्ड पर 5:20 पर। तब तक ये गीत अनुषा मानी और विशाल दादलानी की आवाज है। शंकर ईशान लॉय ने इसे संगीतबद्ध किया। अगले कार्यक्रम का इंतजार करें और सुनते रहिए इस गीत को।

0: টেলিলয়ের অ্যাপ, ওয়েবসাইট www.tele-law.in অথবা টোল ফ্রি নাম্বার 14454 এর মাধ্যমে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা লাভ করা সম্ভব।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

107 FM रेनबो पर कार्यक्रम यादों की बारात। जी हाँ, इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़े हुए हैं और आज क्योंकि है यादों की बारात, यादों की बारात के अंतर्गत हम मई के महीने में रिलीज हुए कुछ फिल्मों को याद करते हैं। मई की खुशबू संग आई, यादों की ये बारात ले आई। जी हाँ, सचते हैं फिर पर्दे पुराने, जगती है बीती हर बात। क्यों ना हम उन फिल्मों को याद करें जो मई में आई, बन गई दिल की धड़कन। किस्से, गाने, संवाद उनके आज भी देते हैं स्पंदन। छुपे हुए कुछ राज होते थे, कुछ अनसुनी सी बातें। हर ट्रिविया के संग लौटती है वो सुनहरी सी रातें। लो आइए चले सफर पर बीते लम्हों के साथ, जहां सिनेमा की दुनिया में बसती है बस और बस यादों की बारात। कौन से फिल्मों के साथ ये हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक गीत हो जाए। केके की आवाज नासिर फराज ने लिखा, राजेश रोशन जिनका आज जन्मदिन है, उन्हीं के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम काइट्स।

0: जादू की बारात।
1: FM रेनबो पर यादों की बारात। हर संडे आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं और 7:12 हो रहे हैं, आप जुड़े हुए संचिता के साथ और हम बात कर रहे हैं फिल्म काइट्स की। और काइट्स जो कि 21 मई 2010 यानी कि 16 साल पूरे कर लिए इसने इंडस्ट्री में। आज राजेश रोशन का जन्मदिन है, तो चलिए शुरुआत करते हैं काइट्स से ही। काइट्स को बॉलीवुड की पहली ग्लोबल रोमांस फिल्मों में गिना जाता है। बिल्कुल, ईयर 2010 में रिलीज हुई काइट्स को निर्माता निर्देशक टीम ने केवल हिंदी फिल्म नहीं बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया था। फिल्म में हिंदी के साथ स्पैनिश और इंग्लिश डायलॉग्स का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया, जो उस समय बॉलीवुड के लिए अनयूजुअल सा एक एक्सपेरिमेंट था। निर्माता राकेश रोशन चाहते थे कि फिल्म भारत के साथ विदेशी बाजारों में भी चले। यही वजह थी कि उसे 30 से अधिक देशों में रिलीज किया गया और नॉर्थ अमेरिका में उस समय की सबसे बड़ी बॉलीवुड रिलीजेस में शामिल किया गया। मैक्सिकन लीडिंग लेडी बारबरा मोरी, बॉलीवुड की पहली बड़ी एक अभिनेत्री के रूप में उन्हें कास्ट किया गया इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के रूप में। सबसे बड़ी कास्टिंग क्यूरोसिटी थी मैक्सिकन अभिनेत्री बारबरा मोरी की एंट्री। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी नहीं जानती थी वो, इसलिए फिल्म में उनके कैरेक्टर नताशा के लिए स्पैनिश लैंग्वेज को ही स्टोरी का हिस्सा बना दिया गया। डायरेक्टर अनुराग बासु ने लैंग्वेज बैरियर को वीकनेस नहीं बल्कि लव स्टोरी की स्ट्रेंथ बनाया। बारबरा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कहानी सुनकर वो इमोशनल हो गई और लगभग रो पड़ी थी, जिसके बाद उन्होंने फिल्म के लिए तुरंत हां कर दिया। दीपिका पादुकोण को पहले लीड के तौर पर सोचा गया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि नताशा का किरदार बहुत से लोगों को ऑफर हुई, दीपिका पादुकोण को भी हुई, हालांकि बाद में ये रोल बारबरा मोरी को मिला। मेकर्स चाहते थे कि हीरोइंस में इंटरनेशनल एक अपील हो और कैरेक्टर विजुअली थोड़ा सा अलग लगे, इसलिए अंततः मैक्सिकन एक्ट्रेस को कास्ट करने का फैसला फिल्म की सबसे अनयूजुअल कास्टिंग चॉइसेस में एक गिना जाता है। ये एक वो एक्सपेरिमेंट था उस जमाने में जिसे बहुत रेयर माना गया, क्योंकि किसी मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा में फॉरेन एक्ट्रेस को इतने बड़े रोल में कम देखा गया था। ऋतिक रोशन ने इंटरव्यू में बताया कि काइट्स के लिए उन्हें अपने पुराने जो भी एक्टिंग स्टाइल है उसे बदलना पड़ा, क्योंकि डायरेक्टर अनुराग बासु नेचुरल परफॉर्मेंस चाहते थे।

इसलिए ऋतिक को एग्जैजरेटेड बॉलीवुड जो एक्सप्रेशंस हैं कम करने थे इस फिल्म में। अभिनेता ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने पिछले 10 साल की एक्टिंग को भूलकर कोशिश की ताकि कैरेक्टर जे ज्यादा रॉ और रियलिस्टिक बन सके। दिलचस्प बात यह है कि उस समय ऋतिक को एक नी इंजरी से जूझना पड़ा था, फिर भी उन्होंने फिजिकली डिमांडिंग जो सीन्स थे उसके लिए हामी भरी और उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म भी किया। आगे बढ़ेंगे इसी फिल्म का एक और गीत, तुम भी हो वही, विशाल दादलानी और सूरज जगन। नासिर फराज ने लिखा, राजेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम यादों की बारात, 7:16, 24 सेकंड। आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ।

0: जादू की बारात।
1: सात बजकर 7:20 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम यादों की बारात। सोलह साल पूरे कर लिए फिल्म काइट्स ने, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले पहली जो फिल्म है वो काइट्स है, क्योंकि आज इस फिल्म के जो संगीत निर्देशक है उनका जन्मदिन है। हम बात कर रहे हैं राजेश रोशन की। फिल्म में फिल्म के दो अलग अलग वर्शंस जो हैं वो रिलीज किए गए थे। काइट्स बॉलीवुड इतिहास की रेयर फिल्मों में है जिसके दो वर्शंस ऑफिशियली आए, एक हिंदी थिएट्रिकल वर्शन और दूसरा काइट्स द रीमिक्स, जिसे हॉलीवुड डायरेक्टर ब्रेट रैटनर ने इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए री एडिट किया था। इंग्लिश वर्शन लगभग 90 मिनट का था और उसमें एक्शन तथा पीस पर ज्यादा जोर दिया गया। कुछ सीन्स को दोबारा एडिट किया गया ताकि फिल्म जो है वेस्टर्न ऑडियंस के लिए अधिक अपीलिंग लगे। ये एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं उस समय बॉलीवुड में लगभग अनहर्ड था, कभी किसी ने सुना नहीं था। बिहाइंड द सीन्स रिपोर्ट के अनुसार राकेश रोशन फैमिली ऑडियंस को ध्यान में रखकर हिंदी वर्षन में कुछ स्टीमी सीन्स को कम करना चाहते थे। रिपोर्ट्स में कहा गया कि इंटरनेशनल एडिट के लिए अलग अप्रोच अपनाई जाए, जबकि इंडियन थिएट्रिकल कट को कंपैरेटिवली रेस्ट्रेंड रखा गया। दिलचस्प बात यह है कि उस समय फिल्म की केमिस्ट्री और बोल्डनेस को लेकर काफी चर्चा हुई थी, लेकिन मेकर्स नहीं चाहते थे कि रोमांस एक कंट्रोवर्सी तक पहुंच जाए। हालांकि फिल्म मिक्स्ड रेस्पॉन्स का शिकार हुई, लेकिन उसका म्यूजिक आज भी बेहद पसंद किया जाता है। संगीतकार राजेश रोशन ने मॉडर्न वेस्टर्न साउंड के साथ इमोशनल मेलोडी का एक मेलबंधन स्थापित किया। विशेष रूप से सिंगर केके द्वारा गाए गए दिल क्यों ये मेरा या जिंदगी दो पल की ऑडियंस के बीच एक कल्ट रोमांटिक सॉन्ग बन चुका था। कई लिसनर्स आज भी इन ट्रैक्स को 2010 के बेस्ट बॉलीवुड मेलोडीज में गिनते हैं। और बहुत कम ज्ञात बात है कि ऋतिक रोशन ने काइट्स इन द स्काई नामक ट्रैक में अपनी आवाज भी दी थी। ये सॉन्ग फिल्म की इमोशनल ब्रांडिंग का एक हिस्सा था, इंटरनेशनल ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया गया था। ऋतिक के लिए ये एक अनयूजुअल मूव था, क्योंकि थे तो वो प्राइमरीली एक एक्टर ही, प्लेबैक सिंगर करना अचानक से उनके लिए एक न्यू एक्सपेरिमेंट था। फिल्म के ग्लोबल अपील एक्सपेरिमेंट का ये भी एक इंटरेस्टिंग हिस्सा था। काइट्स में ऋतिक का एक रग्ड लुक जो है, रग्ड सनबर्न्ड और स्लाइटली वेस्टर्न काउबॉय इंस्पायर्ड एक लुक था, अचानक नहीं चुना गया था इसे। डिजाइनर जो थे इस फिल्म के, सुनीत वर्मा ने डायरेक्टर के साथ बैठकर वार्डरोब तैयार किया कि क्या पहनाया जाए हीरो को। जीन्स, अर्दी शेड्स, हैट्स, बियर्ड स्टाइल, जो कि लास वेगास के सेटिंग के अनुसार डिजाइन किया गया ताकि कैरेक्टर जे बहुत ज्यादा ग्राउंडेड लगे। उनके हेयर स्ट्रिक्स भी इंटेंशनली रखे गए ताकि लुक जो है कॉन्वेंशनल एक बॉलीवुड हीरो से काफी अलग लगे। आगे बढ़ते हैं, एक और गीत, वही केके की आवाज। नासिर फराज ने लिखा, राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया। 107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम यादों की बारात संचिता के साथ। 7:25 7 सेकंड

0: जादू की बारात।
1: वन ओ सेवन एफ रेनबो पर यादों की बारात। 7:31 आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ, और हम बात कर रहे थे काइट्स फिल्म की, जिसने 16 साल पूरे कर लिए इंडस्ट्री में। May 21, 2010 को रिलीज हुई थी ये फिल्म। फिल्म का स्केल उस समय बेहद एक्सपेंसिव माना गया। काइट्स उस समय बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्मों में गिनी जाती थी। अब लोकेशंस की ही बात कर लीजिए, लास वेगस, लॉस एंजलिस और डेजर्ट लोकेशंस पर एक्सटेंसिव शूट की गई। बड़े एक्शन सीन्स, इंटरनेशनल कास्ट और ग्लोबल मार्केटिंग कैंपेन पर भारी खर्चे आए। मेकर्स इसे ऋतिक रोशन की इंटरनेशनल क्रॉसओवर फिल्म की तरह प्रमोट कर रहे थे। वही वजह थी कि एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ऊंची थी और ट्रेड सर्कल्स में इसे एम्बिशियस बॉलीवुड गैम्बल कहा गया। काइट्स की शूटिंग केवल ग्लैमरस सिटी लोकेशंस तक सीमित नहीं थी। फिल्म के चेज और सर्वाइवल सीक्वेंसेस जो हैं के लिए अमेरिका के रिमोट डेजर्ट इलाकों में भी फिल्मिंग की गई। रिपोर्ट्स के अनुसार एक्सट्रीम हीट और अनप्रेडिक्टेबल वेदर के कारण कास्ट और क्रू को कई प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। कुछ फिजिकली एग्जॉस्टिंग सीन्स थे वास्तविक वातावरण में शूट किए, ताकि जो स्ट्रगल जो है वो ऑथेंटिक लगे, रियलिस्टिक लगे। डायरेक्टर चाहते थे कि डेजर्ट केवल बैकग्राउंड न लगे, बल्कि कहानी के लोनलीनेस और वो जो इमोशनल एक आइसोलेशन जिसके थ्रू वो जो कैरेक्टर्स हैं वो जूझ रहे थे, वो नजर आए। कंगना रनावत का एक ग्लैमरस रोल कहानी में स्ट्रैटेजिक पर्पस से रखा गया था। जीना स्क्रीन टाइम में सीमित था, लेकिन स्क्रीन प्ले में इसका महत्व काफी बड़ा था। जीना और जे, ऋतिक और कंगना का रिश्ता कहानी के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को एस्टैब्लिश करता है इस फिल्म में। दिलचस्प बात यह है कि मेकर्स चाहते थे कि कंगना का कैरेक्टर बहुत सोफिस्टिकेटेड, वेल्दी और इमोशनली प्रोग्रेसिव लगे, ताकि नताशा और जीना के बीच विजुअल तथा इमोशनल कॉन्ट्रास्ट साफ दिखाई दे। क्रिटिक्स ने बाद में कहा कि कंपैरेटिवली छोटे रोल में भी कंगना ने बहुत ही नोटिसिएबल स्क्रीन प्रेजेंस छोड़ी। काइट्स का म्यूजिक केवल गाना तक या सॉन्ग्स तक सीमित नहीं रहा। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को हॉलीवुड स्टाइल रोमांटिक थ्रिलर फील देने के लिए केयरफुली एक डिजाइन किया गया। डेजर्ट चेज सीन्स, इमोशनल साइलेंस या फिर लैंग्वेज बैरियर वाले जो मोमेंट्स थे, म्यूजिक को डायलॉग से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। कंपोजर टीम चाहती थी कि ऑडियंस इमोशंस को वर्ड्स की बजाय साउंड और विजुअल्स के माध्यम से फील करे, महसूस करे। यही कारण है कि फिल्म का स्कोर जो है कई व्यूअर्स को उसके विजुअल जितना मेमोरेबल लगा, भले ही मूवी को मिक्स्ड रिव्यूज मिले। हम बात कर रहे थे फिल्म काइट्स की। 7:35 और फिल्म काइट्स के बाद हमें आगे बढ़ना

है एक और फिल्म के साथ, और ये फिल्म क्या है? 1994 में रिलीज हुई, 6th of May, यानी कि 32 साल कंप्लीट कर लिए इसने। शुरू करेंगे इस फिल्म के कास्ट में सनी देओल, बॉबी देओल के साथ साथ उर्मिला मातोंडकर, प्रीति जिंटा, दारा सिंह जैसे दमदार अभिनेता और अभिनेत्रियां ने काम किया। इसी फिल्म का एक गीत कुमार शानू और लता मंगेशकर की आवाज में है, समीर ने गीत लिखे थे और दिलीप सेन, समीर सेन संगीतकार जोड़ी ने इसे संगीत से बांधा। चलिए सुनते हैं।

फिल्म है, 1994 में रिलीज हुई, जिसने इंडस्ट्री में 32 साल पूरे कर लिए। ये दिल लगी की कहानी काफी हद तक 1954 की हॉलीवुड फिल्म सबरीना से प्रेरित मानी जाती है। सबरीना में भी दो अमीर भाइयों और एक साधारण पृष्ठभूमि की लड़की के बीच प्रेम त्रिकोण दिखाया गया था। निर्देशक और यशराज टीम ने इस कहानी को भारतीय सामाजिक परिवेश और भावनात्मक वैल्यूज के अनुसार ढाला। इंटरेस्टिंग ये है कि फिल्म में रोमांस के साथ फैमिली इमोशंस और क्लास डिफरेंस को भी जोड़ा गया, जिससे ये सिर्फ रीमेक जैसी नहीं बल्कि भारतीय दर्शकों के लिए एक नया अनुभव बन जाए। ये दिल लगी उन शुरुआती फिल्मों में से थी जहां और को ब्रदर्स के रूप में कास्ट किया गया, और समय जो है दोनों अपने करियर के शुरुआती फेज में थे। बिहाइंड द सीन्स रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्टर चाहते थे कि दोनों एक्टर्स के जो पर्सनालिटीज हैं वो नेचुरली कॉन्ट्रास्ट में रहे। अक्षय को मच्योर और रिस्पॉन्सिबल दिखाया गया, जबकि सैफ को चार्मिंग केयरफ्री दिखाया गया। बाद में दर्शकों को उनकी केमिस्ट्री इतनी पसंद आई कि दोनों ने कई अन्य फिल्मों में भी साथ काम किया, और ये पेयरिंग जो है 1990s की पॉपुलर स्क्रीन डुओज में गिनी जाती है। काजोल का एक बहुत ही ग्लैमरस सा ट्रांसफॉर्मेशन फिल्म में देखा गया। फिल्म में सपना का किरदार उन्होंने निभाया, जो शुरुआत में साधारण बैकग्राउंड से आती है लेकिन बाद में एक ग्लैमरस फैशन मॉडल बनती है। कम लोग जानते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को बिलीवेबल, विश्वसनीय बनाने के लिए कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग और मेकअप पर विशेष मेहनत की गई थी। यशराज फिल्म्स उस समय मॉडर्न अर्बन रोमांस की इमेज को मजबूत बनाना चाहते थे, इसलिए काजोल का लुक डेलिबरेटली उन्होंने सोफिस्टिकेटेड रखा। क्रिटिक्स ने माना कि फिल्म ने काजोल को सिर्फ इमोशनल एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक स्टाइलिश रोमांटिक हीरोइन के रूप में स्थापित किया। आगे बढ़ेंगे समीर का लिखा हुआ एक और गीत इसी फिल्म से, यह दिल लगी। दिलीप सेन, समीर सेन संगीतकार जोड़ी ने इस गीत को संगीतबद्ध किया। आवाज है पंकज उदास की। कार्यक्रम यादों की बारात।

107 FM रेनबो पर यादों की बारात। 7:54 आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में और हम दूसरी फिल्म ये दिल लगी के बारे में बात कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। आठ बजकर दो मिनट पर हम वापस आएंगे इसी कार्यक्रम को लेकर, लेकिन बीच में हमें रूबरू होना है खबरों की दुनिया से। होठों पे बस तेरा नाम है, ओरिजिनली इतना बड़ा हिट नहीं माना गया था। फिल्म का मशहूर गीत होठों पे बस आज एक कल्ट रोमांटिक सॉन्ग में गिना जाता है, लेकिन म्यूजिक टीम को शुरुआत में अंदाजा नहीं था कि ये इतना लोकप्रिय होगा। संगीतकार जोरी ने इस ट्रैक को सॉफ्ट मेलोडी के रूप में तैयार किया था। सिंगर और की जो आवाज है, टाइमलेस फील दी इस आवाज ने। रिलीज के बाद ये गाना जो है रेडियो कैसेट मार्केट में बेहद लोकप्रिय हुआ। 1990s में रोमांटिक सिनेमा की नई पहचान बना रहा। यशराज फिल्म्स के मॉडर्न रोमांस फेज को मजबूत किया इस फिल्म ने। ये दिल्लगी को भी उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना गया, जिसमें स्टाइलिश कॉस्ट्यूम्स, अर्बन सेटिंग्स, कैची म्यूजिक और एस्पिरेशनल रोमांस दिखाया गया। इंटरेस्टिंग ये

था कि फिल्म ने बड़े शहरों की मॉडर्न लाइफस्टाइल को बड़े ही ग्लैमरस अंदाज में प्रस्तुत किया। जो उस समय यूथ ऑडियंस थे उनको काफी आकर्षक लगा। बाद में इस स्टाइल को दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसे फिल्मों में बड़े स्तर पर देखा गया। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक गीत के साथ, और गीत के उस पार हम रूबरू होंगे खबरों की दुनिया से। 8:02 पर फिर वापस आते हैं कार्यक्रम यादों की बारात को लेकर, और बात करेंगे इसी फिल्म के बारे में, ये दिल लगी। फिलहाल लता मंगेशकर, अभिजीत और उदित नारायण की आवाज, समीर के बोल को दिलीप सेन, समीर सेन ने संगीतबद्ध किया।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: এখন থেকে প্রতি শনিবার বেলা 11:30 107 মেগাহার্টজে শুনুন আকাশবাণী, ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন ও অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের ক্রিকেট নিয়ে একটি বিশেষ যুগ্ম অনুষ্ঠান স্টাম্প। প্রতি সপ্তাহে বিশ্ব ক্রিকেটের সেরা খবরগুলি নিয়ে বিস্তারে জানতে শুনুন স্টাম্প প্রতি শনিবার 107 মেগাহার্টজে ঠিক বেলা 11:30।

0: जादू की बारात।
1: वन ओ सेवन एफएम रेनबो पर यादों की बारात 8:05। हम बात कर रहे थे फिल्म ये दिल लगी, जिसने सिक्स मई 1994 को रिलीज होने वाली फिल्म, जिसने 32 इयर्स यानी कि 32 साल पूरे कर लिए। ये दिल लगी की बड़ी खासियत उसका फैशनेबल प्रेजेंटेशन था, खास करके ग्लैमरस आउटफिट्स, वेस्टर्न स्टाइलिंग, 1990s की अर्बन फैशन इंस्पिरेशन माने गए। कम लोग जानते हैं कि प्रोडक्शन टीम ने फैशन मैगजीन ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर वार्डरोब तैयार किया था। सपना के ट्रांसफॉर्मेशन को विजुअली

पावरफुल बनाने के लिए कॉस्ट्यूम को कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया। यही वजह थी कि फिल्म ने रोमांस के साथ ग्लैमर कोशेंट भी बढ़ाया और कॉलेज गोइंग ऑडियंस में काफी लोकप्रिय हुए। इस फिल्म का एक सुपरहिट गाना काफी चला, ओले ओले। सैफ अली खान के करियर का इमेज चेंजिंग मोमेंट कह सकते हैं। केवल चार्ट बास्टर नहीं बल्कि यूथफुल इमेज बनाने में भी एक अहम साबित हुई ये गीत। दिलचस्प बात यह है कि उस समय सैफ जो है इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ही रहे थे और मेकर्स चाहते थे कि उनका किरदार प्लेफुल और चार्मिंग लगे। सिंगर की जो एनर्जेटिक वॉइस और उनकी जो डांस मूव्स हैं, कैची कोरियोग्राफी ने गाने को बहुत ही यूथ एंथम जैसा बना दिया। बाद में ओले ओले बॉय इमेज में लंबे समय तक सैफ इसी इमेज के साथ जुड़े रहे। चलिए इसी गीत को सुनते हैं। अभिजीत और साथियों की आवाज में समीर ने बोल लिखे और दिलीप सेन समीर सेन ने इसे संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम है यादों की बारात।

0: जादू की बारात।
1: वन ओ सेवन एफ एम रेनबो में यादों की बारात। 8:12 आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ और हम बात कर रहे हैं 32 साल पुरानी फिल्म ये दिल लगी के बारे में। अक्षय कुमार के सीरियस रोल को जानबूझकर सैफ के ऑपोजिट रखा गया। उस दौर में मोस्टली एक्शन हीरो इमेज के लिए जाने जाते थे अक्षय कुमार। ये दिल लगी में उन्हें इमोशनली रेस्ट्रेंड एक बिजनेसमैन का रोल दिया गया, क्योंकि डायरेक्टर चाहते थे कि उनका कैरेक्टर दायित्वपूर्ण यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैच्योरिटी दिखाए, जबकि सैफ का कैरेक्टर बहुत ही केयरफ्री लगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इसी कॉन्ट्रास्ट की वजह से लव ट्राइंगल ज्यादा रियलिस्टिक लगा फिल्म में। अक्षय के शुरुआती रोमांटिक परफॉर्मेंसेस में गिनी जाती है ये, जिसने बाद में उनके करियर को एक डाइवर्स मोड लेने में मदद की। आकाशवाणी एफएम रेनबो में कार्यक्रम है यादों की बारात और हम बात कर रहे हैं ये दिल लगी फिल्म के बारे में। फिल्म के जो सॉन्ग्स थे, जैसा कि मैं बताई चुकी हूं कि कैसेट एरा में बेहद एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस गिन सकते हैं, कह सकते हैं 1990s कैसेट मार्केट का दौर था और ये दिल लगी का म्यूजिक एल्बम अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ह्यूज इसकी जो है सेलर रिपोर्ट सामने आई। हाँ, होठों पे बस तेरा नाम है, नाम क्या है, ओले ओले जैसे जो ट्रैक्स है ना, म्यूजिक स्टोर्स और रेडियो काउंटडाउन्स में लंबे समय तक छाए रहे। संगीतकार जोरी के करियर के लिए भी एल्बम महत्वपूर्ण साबित हुआ। कई ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म की एडवांस जो बज है बज बनाने में ये तीन जो सॉन्ग्स हैं, ये जो तीन ट्रैक्स हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान था। तो चलिए उसी सॉन्ग की ओर, उसी ट्रैक की ओर हम बढ़ते हैं। कुमार शानू, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम ये दिल लगी, नाम क्या है। समीर के बोल को दिलीप सेन, समित सेन, संगीतकार जोड़ी ने संगीतबद्ध किया। 8:14 आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ।

0: जादू की बारात।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो पर कार्यक्रम यादों की बारात। 8:18 और 12 सेकंड। हम बात कर रहे हैं इस सेगमेंट में ये दिल लगी फिल्म के बारे में, जिसने 32 ईयर्स यानी कि 32 साल कंप्लीट कर लिए इंडस्ट्री में। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी, कॉस्ट्यूम्स और अपस्केल लोकेशंस को देखकर कई क्रिटिक्स ने इसे बहुत ही ग्लॉसी बॉलीवुड रोमांस का करार दिया। मूवी को एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल के साथ प्रेजेंट किया गया, जिसमें आपने लग्जरी कार्स, फैशनेबल क्लोथ्स, अफ्लुएंट जो अमीर फैमिली बैकग्राउंड के जरिए दिखाया गया। और ये प्रेजेंटेशन उस दौर के हिंदी सिनेमा में नया तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक एक नया महसूस भी कराता है, क्योंकि इतना ग्लैमर पहले कभी नहीं देखा था किसी ने। कई फिल्म हिस्टोरियंस जो हैं मानते हैं कि ये दिल लगी ने बॉलीवुड रोमांस को अधिक बहुत ज़्यादा अर्बन और स्टाइलिश बना दिया। लगी आज सावन बल्कि मैं दीवाना तेरा, ये जो ट्रैक्स है ना, एक तो फिल्म चांदनी से है और दूसरा इस फिल्म से। फिल्म के रिलीज के समय मेकर्स ने केवल रोमांटिक सॉन्ग्स पर निर्भर रहने के बजाय अब भी ट्रैक्स को भी प्रमोट किया। मैं दीवाना तेरा, ओले ओले को म्यूजिक चैनल्स तथा टीवी प्रमोशंस में कंपैरेटिवली ज़्यादा हाईलाइट किया गया, क्योंकि टीम को लगा था कि यूथ ऑडियंस बहुत एनर्जेटिक होती है और एनर्जेटिक सॉन्ग से जल्दी कनेक्ट कर पाएगी। दिलचस्प बात यह है कि बाद में इमोशनल रोमांटिक ट्रैक जैसे होठों पे बस जो है बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हिट साबित हुई। इससे मेकर्स को भी बहुत सरप्राइज हुए वो भी कि सॉफ्ट मेलोडीज की जो सेल्फ लाइफ ज़्यादा निकलती है जनरली, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हुआ, क्योंकि जो हाई बीट सॉन्ग्स थे वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए। काजोल और अक्षय कुमार की केमिस्ट्री पहली बार बड़े पर्दे पर लोगों ने देखा। हालांकि पहले साथ काम नहीं किया था इन लोगों ने, लेकिन ये दिल लगी में उनकी पेयरिंग ऑडियंस को काफ़ी फ्रेश लगी। रिपोर्ट्स के अनुसार डायरेक्टर चाहते थे कि दोनों के इमोशनल सीन्स बहुत नेचुरल लगे, इसलिए

0: कुछ सीक्वेंसेस में रिहर्सल कम रखी गई। दिलचस्प ये था कि फिल्म के मच्योर रोमांस वाले हिस्से में अक्षय काजोल जो है काफी डायनामिक लगे, ज्यादा सीरियस रखा गया, जबकि सैफ काजोल सीन्स जो है कंपैरेटिवली बहुत ही मजाकिया या प्लेफुल थे। यही कॉन्ट्रास्ट जो है एक लव ट्राइंगल को बहुत ही एंगेजिंग बनाता है। हम सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की बारात, 8:21 और आगे बढ़ते हैं जिस गीत के साथ, वो है लता मंगेशकर की आवाज में। समीर ने लिखा, दिलीप सेन, समीर सेन ने संगीतबद्ध किया, गोरी कलाई, कार्यक्रम यादों की बारात। आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ।
1: झुमा झुमा

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर कार्यक्रम यादों की बारात 8:26:59 आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ। बात कर रहे थे फिल्म ये दिल लगी के बारे में। फिल्म की शूटिंग में लग्जरी लोकेशंस का इस्तेमाल इमेज बिल्डिंग स्ट्रैटेजी थी। फिल्म में अपस्केल हाउसेस, क्लब्स और रिच बिजनेस एनवायरनमेंट को केवल ग्लैमर के तौर पर नहीं दिखाया गया था। डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम चाहते थे कि एफ्लुएंट लाइफस्टाइल कहानी के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का एक पार्ट बने, हिस्सा बने। सपना का मिडिल क्लास बैकग्राउंड और चोपड़ा फैमिली की रिच वर्ल्ड के बीच का जो एक कॉन्ट्रास्ट है वो विजुअली मजबूत लगे, इसलिए सेट्स और लोकेशंस केयरफुली चूज किए गए थे। यही वजह थी कि मूवी उस समय एक एस्पिरेशन सिनेमा जैसी महसूस हुई और अर्बन मिडिल क्लास ऑडियंस को आकर्षित करने में कामयाब रही। नाइनटीज के शुरुआती दौर में करियर बिल्ड कर ही रहे थे एक रोमांटिक एक्टर के रूप में। ये दिल लगी की सफलता ने इन्हें ग्लैमरस रोमांटिक हीरोइन के रूप में स्थापित करने में मदद की। क्रिटिक्स ने खासकर उनके कॉन्फिडेंस और स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ की और ये भी कहा कि फिल्म के लिए काजोल को कई अवार्ड नॉमिनेशंस मिले, जिससे इंडस्ट्री में उनकी क्रेडिबिलिटी और मजबूत हुई। बाद में इन्हीं क्रेडिबिलिटीज के वजह से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसे फिल्मों में इसी इमेज को और लोकप्रिय बनाया। ये दिल लगी कि बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें हीरोइन का रिश्ता दोनों भाइयों के साथ पूरी तरह अलग एक इमोशनल टोन रखता था। एक तरफ प्लेफुल यूथफुल अट्रैक्शन था, वहीं दूसरी तरफ मच्योर इमोशनल स्टेबल रोमांस दिखाया गया। निर्देशक चाहते थे कि ऑडियंस बहुत नेचुरली जेन्युइनली कंफ्यूज रहे कि सपना अंत में किसे चुनेगी। यही बैलेंस जो है लव ट्रायंगल फिल्म को टिपिकल रोमांस से अलग बनाता है और रिपीट व्यूइंग जो वैल्यू है उसे बढ़ाता है। आगे बढ़ेंगे एक लास्ट ट्रैक के साथ। इस फिल्म का कुमार शानू और लता मंगेशकर की आवाज देखो जरा। कार्यक्रम है यादों की बारात 8:29:00

0: जादू की बारात।
1: FM रेनबो पर यादों की बारात 8:35 और 19 सेकंड। काइट्स ये दिल लगी के बाद अब उस फिल्म का जिक्र करेंगे जिसने 29 साल कंप्लीट किए। 1997 में ये फिल्म जो है रिलीज हुई थी। तेलुगु सुपरहिट फिल्म की आधिकारिक रीमेक मानी जाती है। ब्लॉकबस्टर घराना मोगुडू से प्रेरित मानी जाती है, जिसमें फैमिली एक्सेप्टेंस और आइडेंटिटी कंफ्यूजन

की थीम रखी गई थी। हालांकि निर्देशक डेविड धवन ने इसे टिपिकल एक गोविंदा स्टाइल कॉमेडी मिसअंडरस्टैंडिंग और फैमिली एंटरटेनमेंट के साथ पूरी तरह बॉलीवुड फ्लेवर दिया। स्क्रीन प्ले में कॉमिक टाइमिंग और बढ़ा चढ़ाकर सिचुएशंस जानबूझकर जोड़े गए ताकि नॉर्थ इंडियन ऑडियंस जो है ज्यादा कनेक्ट कर सके। यही अडाप्टेशन फिल्म की बड़ी कमर्शियल स्ट्रेंथ साबित हुई। बिल्कुल, फिल्म क्या है, कौन सी फिल्म है जो 1997 में घराना मोगुडू की रीमेक बनी। चलिए इस फिल्म का एक गीत सुनते हैं, उदित नारायण की आवाज, पूर्णिमा है साथ में, कार्यक्रम है यादों की बारात। आप जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में संचिता के साथ।

हीरो नंबर वन, जी हाँ, इसी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। गोविंदा और करिश्मा कपूर की केमिस्ट्री उस समय हिट फॉर्मूला बन चुकी थी। 1990s में गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी लगातार सुपरहिट फिल्म्स दे रही थी। हीरो नंबर की कास्टिंग के समय मेकर्स को पूरा भरोसा था कि उनकी कॉमिक केमिस्ट्री फिल्म का सबसे बड़ा अट्रैक्शन बनेगी। और BTS रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों एक्टर सेट पर इम्प्रोवाइजेशन करते रहते थे, जिससे रोमांटिक कॉमेडी सीन ज्यादा स्पॉन्टेनियस लगती थी। और खासकर डांस नंबर्स और नोकझोंक वाले जो सीन्स होते थे, ऑडियंस ने खूब पसंद किया। ये फिल्म उनके सबसे यादगार कोलैबोरेशंस में गिनी जाती है। गोविंदा ने सर्वेंट वाले सीन्स के लिए बॉडी लैंग्वेज अलग तैयार की थी। फिल्म में राजेश मल्होत्रा यानी कि गोविंदा का किरदार जो है अमीर परिवार का लड़का होकर भी सर्वेंट बनकर ससुराल में रहता है। कम लोग जानते हैं कि गोविंदा ने कॉमेडी को रियलिस्टिक दिखाने के लिए सर्वेंट फेज की जो बॉडी लैंग्वेज है और एक्सप्रेशंस है उसे अलग रखे। शुरुआती हिस्से में कैरेक्टर कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश दिखाया जाता है, जबकि सर्वेंट फेज में एग्जैजरेटेड इनोसेंस और कॉमिक ह्यूमिलिटी से लोगों को हंसाया जाता है। निर्देशक डेविड धवन चाहते थे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही कॉमिक लगे, मजेदार लगे, लेकिन फोर्स्ड बिल्कुल भी ना लगे स्क्रीन पर। यही वजह थी कि फिल्म के हाउसहोल्ड कॉमेडी सीन्स आज भी बहुत पॉपुलर है। हीरो नंबर वन का म्यूजिक रिलीज के पहले ही कैसेट मार्केट में लोकप्रिय होने लगा था। विशेष रूप से ये जो गीत आपने सुना, सोना कितना सोना है, टाइटल थीम सॉन्ग ने यूथ ऑडियंस को अट्रैक्ट किया। संगीतकार जोड़ी इस बार आनंद मिलंद ने टिपिकल 90s डांस बीट्स और कैची रोमांटिक मेलोडीज का एक मिक्स तैयार किया। सिंगर्स की जो एनर्जेटिक वोकल्स हैं और गोविंदा करिश्मा की डांसिंग केमिस्ट्री ने सॉन्ग्स को एक विजुअल हिट बना दिया। म्यूजिक पॉपुलैरिटी ने फिल्म की ओपनिंग ऑडियंस बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। आगे बढ़ेंगे एक और ठुमका वाला गीत, सोनू निगम की आवाज, समीर ने लिखे और आनंद मिलन ने संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम यादों की बारा।

इस कार्यक्रम का खासियत है, इस कार्यक्रम की यही खासियत है कि ये आपको पीछे ले जाता है। 90s का ये ट्रैक न जाने कितनी दफा हमने सुनी है।

8:48 और 48 सेकंड हम जुड़े हुए जिस कार्यक्रम के साथ वो है यादों की बारात, और बात कर रहे हैं हीरो नंबर वन फिल्म की। हीरो नंबर वन की कॉमेडी केवल गोविंदा की टाइमिंग पर निर्भर नहीं थी। वेटरन राइटर एक्टर कादर खान के डायलॉग्स बेमिसाल और कॉमिक रिदम को बेहद मजबूत बनाता है। दिलचस्प इंटरेस्टिंग बात कहिए कि डेविड धवन गोविंदा फिल्म में कादिर खान का कंट्रीब्यूशन अक्सर बिहाइंड द सीन बैकबोन माना जाता है। फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग, एग्जैजरेटेड रिस्पेक्ट वाले जो सम्मान देने वाले जो सीन्स होते थे, या फिर एक बहुत ही फनी कन्फ्रंटेशन में उनके डायलॉग्स ने ह्यूमर को एक उस ओहदे पर पहुंचा दिया, एक मेमोरेबल बना दिया। कई फैंस मानते हैं कि फिल्म की रिपीट वैल्यू का बड़ा कारण उनके कादिर खान के जो विटी डायलॉग्स होते थे वो हैं। डायरेक्टर डेविड धवन अपनी कॉमेडी फिल्म में एक्टर्स को बहुत स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देने के लिए फ्रीडम देते थे। हीरो नंबर वन में भी कई कॉमिक सीन्स पूरी तरह से स्क्रिप्टेड नहीं थे। रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गोविंदा ने फेशियल एक्सप्रेशन और फनी पॉजेज जो इस फिल्म में दिए हैं और जो डायलॉग डिलीवरी किए हैं उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन किया, खुद से जोड़े हैं। खासकर सर्वेंट डिस्गाइज वाले जो सीन्स थे ना, उनके स्पॉन्टेनियस कॉमिक टाइमिंग ने क्रू को भी सेट पर हंसा दिया। यही नेचुरल ह्यूमर आर्टिस्ट जो है, ह्यूमरस जो रोल के जो आर्टिस्ट होते, यही उनकी खासियत होती है। परेश रावल का एक स्ट्रिक्ट फादर वाला किरदार कॉमेडी कॉन्ट्रास्ट के लिए डिजाइन किया गया था। करिश्मा कपूर के पिता का किरदार निभाया, जिसे इंटेंशनली बहुत इगोइस्टिक, एक स्ट्रिक्ट रखा गया। निर्देशक चाहते थे कि उनका सीरियस पर्सनालिटी गोविंदा की फनी एनर्जी के ऑपोजिट लगे, ताकि ह्यूमर ज्यादा प्रभावी ना हो। कम ज्ञात है कि कुछ सीन्स में परेश रावल ने अपने रिएक्शंस को बहुत डेलिबरेटली अंडररेटेड रखा, जिससे कि गोविंदा की जो कॉमेडी है उभर कर सामने आए। बाद में क्रिटिक्स ने माना कि उनकी ये सीरियसनेस फिल्म की कॉमिक को बैलेंस बनाए रखता है।

आगे बढ़ेंगे एक और गीत के साथ। गीत है विनोद राठौड़ और साधना सरगम की आवाज में, फिल्म वही हीरो नंबर वन, कार्यक्रम यादों की बारात संचिता के साथ।

फिल्म की फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी जानबूझकर एक क्लीन फ्रेंडली फिल्म बनाई थी डेविड धवन ने। और इसी के साथ इजाजत दीजिए संचिता को, आप जुड़े हुए थे जिस कार्यक्रम के साथ, वो है यादों की बारात। ऐसे ही जुड़े रहिए अगले कार्यक्रम के साथ और सुनते रहिए इस कार्यक्रम का आखिरी गीत कुमार शानू की आवाज में।

0: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, दी आकाशवाणी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर हम बात करें 9 अंक की, तो बहुत खास होता है ये। पूर्णता, परोपकार, अध्यात्म और ज्ञान का प्रतीक होता है, और ये बताता है कि ये जीवन का ना कई चक्र पूरे हो चुके हैं। तो हम क्यों बात कर रहे हैं इसकी, क्योंकि आज हमारे इस एपिसोड का ना 9 अंक से बहुत खास लेना देना है, क्योंकि जो प्रसार भारती है, उसका जो रेडियो डिवीजन है, वो अपने 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है। और इस खास मौके पर हमने सोचा कि क्यों ना आपको हमें एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएं जिसने 90 सालों के सफर को या उसके बहुत अहम पहलुओं को करीब से जाना है, समझा है। आज हमारे साथ हैं फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी मिताली चटर्जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: धन्यवाद।
3: आपने स्वागतो क्या बोलते हैं आप बताएं?
4: सुस्वागतम, अदरवाइज आप हिंदी में बोल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आई एम अ यूपीआईट।
3: ओह, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी, धन्यवाद।
3: आपके करियर से शुरुआत करते हैं।
4: जी,
3: रेडियो हम सब सुनते हैं, बहुत बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। तो जब आप रेडियो सुनती थी, क्या कभी आपने सोचा था कि आप रेडियो में जाकर काम कर रही होंगी?
4: हाँ, ये बात आपने बहुत पूछी है जो मेरे दिल के काफी करीब है। इनफैक्ट वो दौर ही कुछ और था, 80s का दौर था, और उस समय रेडियो का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था हर एक की जीवन में, क्योंकि उस समय ये प्राइवेट कुछ भी नहीं था और टीवी भी नहीं था। तो रेडियो मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए इट वाज अ वेरी बिग एंटरटेनमेंट, और एक फैसिनेशन भी होता था, क्योंकि वहाँ पे द पीपल हु वेयर प्रेजेंटिंग द प्रोग्राम्स वो लार्जर देन लाइफ होते थे हम लोग के लिए, कि हम लोग एक इमेजिन करते थे। रेडियो में वही पक्ष सबसे मजेदार है, आप कुछ भी सोच सकते हैं जी, कैसे हो रहा होगा पीछे।
3: तो वो इमेजिनरी वर्ल्ड यहाँ पर आकर क्या बिल्कुल वैसा ही था जैसा आपने सोचा था?
4: देखिए, एक शुरुआती में जर्नी बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मेरी जर्नी शुरू हुई थी व्हेन आई वाज इन माय टीन्स।
3: ओके।
4: और मैंने बतौर एक क्लासिकल सिंगर युवावाणी में एग्जाम दिया था, एंड आई गॉट थ्रू इट। तो वो मैंने प्रोग्राम करना शुरू किया, और मुझे पता नहीं था कि एक दिन मुझे यहीं पे काम करने को मिलेगा एज एन इंजीनियर।
3: उतने लंबे समय में आपने बहुत लंबे समय तक काम किया है। I'm sure आपने शायद बताया कि 33 सालों तक आपने काम किया, 3 दशक से भी ज्यादा। क्या उस समय से लेकर अब तक एक ट्रेडिशनल वे में जब हम काम करते थे और आज इंटरनेट के दौर में और डिजिटल एरा में क्या फर्क आया है, क्या एवोल्यूशन आपने देखा है?
4: एक तरह से मैं अपने को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि मैंने वो पुराने दौर से लेके डिजिटल एरा तक का सफ़र पूरा अपनी आंखों से देखा है।
3: बिल्कुल।
4: अपनी सर्विस के दौरान, और मैंने हर एक पल को जिया भी है बहुत नज़दीकी से। एंड सबसे बड़ी बात है, आज के समय में कई बार हम सुनते हैं, लोग बोलते हैं ना AIR, ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन कहाँ चला गया, क्या है, लेकिन उस समय इसका एक ओहदा ही कुछ और हुआ करता था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि फर्स्ट जब इंटरनेट आया था 1997 के आसपास, AIR वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रेडियो और इंटरनेट की शुरुआत की थी, और वहाँ पे हम लोग के पास इतने प्रोग्राम मतलब इतने ईमेल्स आया करते थे, और हम लोगों ने R&D रिसर्च डिपार्टमेंट से इसकी शुरुआत हुई थी, तो हम लोग के पास सैकड़ों की तादाद में आया करते थे, क्योंकि फॉरेन में उस समय इस तरह के भारतीय प्रोग्राम्स का कोई माध्यम नहीं था, क्योंकि उस समय DTH शुरू नहीं हुआ था।
3: बिल्कुल।
4: तो वो एक दौर था कि उस समय डिजिटल 1998 में रेडियो ऑन इंटरनेट शुरू हुआ।
3: जी।
4: तो वो एक बहुत ही यादगार समय है, और जिस समय मैंने ज्वाइन किया उस समय तो FM इट स्टार्टेड।
3: जी।
4: तो वो भी एक हमने देखा था कि लोगों के बीच में कितना उत्साह है, और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता था काम करके।
3: बिल्कुल। डिजिटल एरा में आने के बाद आपको क्या लगता है कि जो बदलाव हुए हैं बहुत अच्छे हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके, किस तरफ जा रहे हैं हम?
4: देखिए, टेक्नोलॉजी जो है वो आदमी की ह्यूमन एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए होता है।
3: जी।
4: और उस

0: उसको उस तरह से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी भी है एक प्रोग्रेस के लिए, तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे डिजिटल एरा में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन इसका एक डाउन साइड ये है कि जब टेक्नोलॉजी ही हमारे अगेंस्ट काम करने लगती है। मैं इसका एक जस्ट एग्जाम्पल दूंगी, इससे रिलेवेंट है या नहीं, क्योंकि पहले ड्राइवर्स जो थे उनको पूरे रोड्स दिल्ली में मालूम होते थे। आज के डेट में कोई भी ड्राइवर लेके गूगल मैप पहले ऑन करता है, उसके बाद गाड़ी चलाता है। तो हम लोग शायद अपनी जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है उसको शायद लूज करते जा रहे हैं, जो मुझे लगता है कि शायद जो हमको और प्रोग्रेस करना चाहिए था वो कहीं हम लोग इतनी डिपेंडेंसी नहीं हो।
1: हाँ जी, हाँ जी जी। अब मैं बात करूंगी यहाँ पर, क्योंकि अब डिजिटल एरा में रेडियो और टेलीविजन लगभग मिक्स हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। अब रेडियो सिर्फ सुनने का माध्यम नहीं रहा, अब हम कहीं कहीं उसे देख भी सकते हैं। रेडियो और टेलीविजन दोनों का डिफरेंस आपको क्या समझ में आता है, क्या खास डिफरेंस है और किस तरह से रेडियो यूनिक है?
0: देखिए, अगर बीइंग एन इंजीनियर टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो
1: उस पे भी आएंगे हम आगे।
0: हाँ, वो तो फर्क, बहुत फर्क है, लेकिन मेरा ये पर्सनल व्यू है कि जब आप टीवी में देखते हैं, वैसे तो कहा जाता है कि ऑडियो विजुअल माध्यम ज़्यादा सशक्त है, लेकिन जब आप टीवी में देखते हैं तो आपको सामने ही सब कुछ दिखता है कि जो आदमी एक्ट कर रहा है या जो भी कर रहा है, लेकिन रेडियो में एक वो तिलिस्म या आप कह सकते हैं कि एक जादुई दुनिया, और आप जिनकी आवाज़ सुन रहे हैं यू आर फ्री टू इमेजिन द पर्सन बिहाइंड दैट। आई फील दैट वे AIR हैज़ द एडवांटेज, क्योंकि जब हम लोग हवा महल सुनते हैं या कुछ भी सुनते हैं शायद वही जो आर्टिस्ट है पीछे वही कर रहे होते हैं, लेकिन हम जब भी उनकी बातों को सुनते हैं या उसके हिसाब से हम उसको इमेजिन करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है।
1: राइट राइट
0: जी।
1: अगले 10-20 सालों में आपको क्या लगता है रेडियो कहाँ पहुँचेगा, या क्या AI का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा जैसा कि डर बना हुआ है, जिस तरह से टेलीविज़न के क्षेत्र में भी जो है AI आ चुका है, और रेडियो में क्या किस तरह की चीज़ें हो रही हैं?
0: देखिए, AI जो है आज के दिन में सब जगह पेनिट्रेट कर चुका है, और मुझे लगता है कि जब तकनीक अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल करना भी वाजिब है, लेकिन वही है कि AI को इस्तेमाल करते करते हम अपनी RI को ना भूल जाएं, रियल इंटेलिजेंस विच इज़ अ ह्यूमन एसेट। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि AIR के पास आज के समय में जो सबसे बड़ी इसकी ताकत है, आप लोग के प्रोग्रामिंग स्टाफ का, क्योंकि इनको इतने अच्छे से सेलेक्ट किया जाता है, दे आर कमिंग फ्रॉम UPSC, तो इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए कि कम से कम हम लोग ग्रास रूट लेवल तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें, क्योंकि आज का ज़माना देखिए, इट इज़ नॉट वॉर्स आर द रियलिटी टुडे, वी नेवर थॉट कि 21st सेंचुरी में वॉर्स होंगे, लेकिन और एक चीज़ और है कि इसमें संचार माध्यम या जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको लास्ट पॉइंट तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, जैसा आप कह रही कि कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है।
1: मैं वही बात कर रही हूँ कि ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में बहुत लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजी को जानते भी नहीं हैं और उनको अक्सर ठगा जाता है।
0: बिल्कुल,
1: ये होता है, तो ये नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल, ये बहुत डेंजरस है।
1: अभी तो हमने बात करी कैसे एवोल्यूशन हुआ, अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, क्योंकि जब रेडियो की बात होती है तो अक्सर लोग सिर्फ RJ को जानते हैं या अनाउंसर को जानते हैं, पर उसके पीछे बहुत बड़ी टीम काम करती है। जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारी पूरी एक टीम है पर काम कर रही है, उसके बिना ये पॉडकास्ट लाइव नहीं हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: तो उसी तरह से रेडियो में भी है, किस तरह से पूरी जर्नी होती है, क्या प्रोसेस होता है, वो जो पकी पकाई खीर है लोगों तक पहुंचती है, उसको टेबल तक पहुंचाने का काम करने वाले लोगों का नाम भी आना चाहिए सामने, क्या रहता है वो पूरा प्रोसीजर?
0: देखिए, वाकई में तो ये सारा का सारा फिजिक्स एंड साइंस की करामात है, जो हम लोग इतने दूर बैठे भी सबकी बातों में या देख सकते हैं, तो उसपे पीछे बहुत सारी चीज़ें काम कर रही होती है तकनीकी। पहली बात तो हम आप जहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, शायद इस कमरे से दूसरे कमरे में जाके ही आपको सुनाई नहीं पड़ेगा कौन क्या बोल रहा है, तो ये एक यहाँ पे डिजिटल में तो इनकोडिंग की प्रोसेस भी होती है उसके बैंडविड्थ को कम करने के लिए, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसड्यूसर से हमारी वॉइस को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करते हैं।
1: तो क्या क्वालिटी में चेंजेस आते हैं या वैसे ही रहती है?
0: नहीं, इट डिपेंड्स। से डिजिटल में तो आज के डेट में क्वालिटी, इनफैक्ट आप जो सुनते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में, यू कैन इम्प्रूव इट रादर, कि आपने कहीं पे गलत बोल दिया या आपकी आवाज़ में खराश है तो वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन इम्प्रूवमेंट का जहाँ तक है, आज के डेट में AIR प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है सारे, तो उसमें उस तरह की डिग्रेडेशन का कोई चांस नहीं है, और बाकी जो है हमारे तकनीकी जो सहायक हैं वो लोग भी काफ़ी अच्छे से अपना काम करते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि

0: उसमें कोई डिटरेशन है. राइट.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प.
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं. अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें.
0: अब बात करते हैं कि हम देखते हैं और सुनते हैं कि बहुत सारे रेडियो चैनल्स काम करते हैं अपने अपने अलग अलग तरीके से, लेकिन आकाशवाणी का जो है वो एक अलग अंदाज रहा है जिसे लोग याद करते हैं, और बहुत ही सभ्य भाषा के लिए जाना जाता है आकाशवाणी, जो मुझे लगता है कि अभी भी कायम है. ऐसा नहीं है कि हम भाषा अच्छी इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. सो अभी इस फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में किस तरह से बाकी रेडियो चैनल्स जब बहुत फास्ट पेस्ड हो गए हैं तो कैसे पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हमारी जो है वो अपने आप को सहज बना पाती है या उस तरह से प्रस्तुत कर पाती है लोगों के सामने?
3: देखिए, बहुत ही एक कठिन सवाल आपने पूछा है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिसमें हमारे कोड ऑफ कंडक्ट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और ठीक है, एक समाज के हिसाब से जो बने थे उस समय जैसे भी बने हैं तो उसके दायरे में रखकर सारी चीज़ों को करना मुश्किल होता है प्रोग्राम, क्योंकि आज के दुनिया में जो चीज़ें पहले शायद वो कहते हैं ना नियो नॉर्मल, तो पहले जो चीज़ें शायद स्वाभाविक नहीं थी, आज के डेट में वही चीज़ें आज के डेट में स्वाभाविक हैं. तो आप अगर उसको कुछ चीज़ें कर्टेल करते हो तो स्वाभाविक है आप यंगर जनरेशन के बीच में आप थोड़े से ऑकवर्ड लगोगे. तो वो तो एक कहीं पे है, और इसमें इस तरह का भी आप कह सकते हैं कि जैसे किसी को आपने सैक रेस वाला ड्रेस पहना दिया और उसको बोला गया जाए कि मैराथन दौड़ो.
0: जी जी बिल्कुल.
3: तो कठिन है, यस. लेकिन साथ में आकाशवाणी का ये एक बहुत अच्छी भी बात है कि इसकी एक अलग पहचान है. इसको आप सारे परिवार के साथ आप सुन के बैठ के देख सकते हो, प्लस उसके अलावा जो प्रोग्राम होते हैं उसमें कुछ ना कुछ अर्थ होता है, और बहुत सारी प्रोग्राम मुझे लगता है जेंजी भी सुनती. मैं अभी देख रही थी, इंटरनेट पे मैं चेक कर रही थी, करीब 50% लोग जब गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, दिल्ली में तो आप जानती हैं गाड़ी में ट्रैवल करना कितना लंबा और डिफ़िकल्ट होता है, तो लोग रेडियो सुनते हैं कि दैट्स द ओनली वे दैट दे गेट एंटरटेनमेंट. तो मुझे लगता है वहाँ पे AIR का ऐसा भी नहीं, लोग सुनते हैं. मैं तो सुनती हूँ, मैंने देखा है बहुत सारे लोग सुनते हैं स्पेशली अच्छे वाले प्रोग्राम,
0: और नए नए लोग कनेक्ट हो रहे हैं.
3: बिल्कुल.
0: इतना लंबा समय जो आपने बताया यहाँ पर आकाशवाणी में, आपके खुद के एक्सपीरियंस क्या रहे वर्क कल्चर में या पर्सनल, या फिर क्या आपके टेक अवेज यहाँ से रहे?
3: देखिए, उस हिसाब से मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि वर्क कल्चर के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, और इसमें चाहे आपके सीनियर्स हो चाहे आपके कलीग्स हो, दे आर गुड, दे आर वेरी गुड पीपल एंड दे गिव यू द स्पेस. और शुरू में मुझे याद है जब ने ज्वाइन किया था उस समय मेरे हम लोग थ्रू इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस आए थे डायरेक्टली क्लास्टन सर्विस में, तो वहाँ पे जब लोग पहुँचे तो नेचुरली एक फ्रेश रिक्रूट को कुछ भी पता नहीं होता है कैसे, व्हाट आर द नॉर्म्स एंड कैसे उसको बिहेव करना है. तो माय बॉस कॉल्ड मी वन डे, वी वर गिवन अ रूम, सेपरेट रूम्स एंड ऑल दिस, और उस समय काफ़ी लोग रिस्पेक्ट करते थे बहुत ज़्यादा. तो सर आए मेरे कमरे में, ही सेड कि लिसन, यू आर जस्ट गॉट एंट्री टू दिस सर्विस, आपको कमरे में बैठने के लिए नहीं बोला है, गो टू द फील्ड्स.
0: ओह माय गॉड.
3: सो हम लोग जाते थे, और फील्ड्स में उस समय जैसे एंटीना ट्यूनिंग यूनिट वगैरह ये सारे बहुत खेत टाइप की जगह में हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े घास हुआ करते थे, कई बार सांप वगैरह भी निकलते थे. तो यू वर सपोज टू गो देयर एंड, लेकिन अच्छा लगता था, मैंने हमने एंजॉय किया है धूप में, कड़ी धूप में, और वो एक सेटिस्फेक्शन होता था कि आप कुछ कर रहे हैं वर्थ वाइल. तो आई एम इंडेटेड टू दोज पीपल हु हैव टॉट मी, मे बी इट वॉज अ डिफिकल्ट वे इनिशियली, लेकिन उन्हीं की वजह से शायद.
0: जी, आपने भी बीच में बात करी थी रिस्पेक्ट की, तो मैं इस बात में आना चाहूंगी कि पहले जनरली लोग जब कोई प्रोफेशन की बात आती थी या करियर की बात आती थी तो डॉक्टर इंजीनियर इसी तरह से हम प्रोफेशन को लेते थे, तो उस समय आपके लिए कितनी मुश्किल हुई थी ये बताने के लिए घर में कि मुझे रेडियो ज्वाइन करना है, क्या उतना ही रिस्पेक्टफुल करियर ऑप्शन था या आसान था या मुश्किल था?
3: देखिए, उस समय की तो बात ही अलग थी, मे बी इट वॉज वेरी लॉन्ग लॉन्ग बैक, उस समय इंजीनियरिंग में भी लोग बहुत ज्यादा नहीं आते थे. हमारे क्लास में ओनली 4 गर्ल्स वेयर थे एंड रेस्ट ऑफ द पीपल वेयर.

0: एंड घर से भी थोड़ा सा वो रहता था कि अच्छा इतने साल 4 साल का इंजीनियरिंग करेगी फिर ये है. उस समय मतलब लोगों को बस ये रहता था कि लड़की बड़ी हो गई तो शादी कर दो. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फादर हु स्टूड बाई मी एंड आई एम द ओनली चाइल्ड. तो उन्होंने मेरे को पूरे समय सपोर्ट किया पढ़ाई में और मेरे को इंजीनियरिंग करने को दिया. लेकिन दादी ने फिर उन्होंने बोला कि नहीं बस हो चुका पढ़ाई वढ़ाई. तो एग्जाम तो दे दिया था मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का, रिजल्ट नहीं निकली थे मेरे तो मुझे उन्होंने शादी हो गई. मेरी शादी के बाद फिर रिजल्ट्स आए और मुझे आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट द AIR इलाहाबाद, नहीं तो शायद नौकरी भी नहीं होती. एंड इसमें लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आई विल उस समय की मैं बोलती हूँ कि जॉइंट फैमिलीज होती थी. माई फादर इन लॉ जस्ट सेड वन वर्ड वन सेंटेंस, ही केम टू ड्रॉप मी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई जॉइनिंग टू AIR इलाहाबाद एंड ही टोल्ड मी यू वर्क सिंसियरली एंड डेडिकेटेड वे सो दैट यू बिकम indispensable for people. और वो बात तो मैंने गांठ बांध ली और
1: quite a support.
0: बिल्कुल. और इसमें आई थिंक फैमिली सपोर्ट मेरे पेरेंट्स का मेरे इन लॉज का अगर नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती.
1: आपकी लर्निंग्स की बात कर ली हमने, अब हम बात करते हैं क्या कोई ऐसा फनी मोमेंट है जो आपको अभी तक याद हो जो आप भूले ही ना हो अपनी ज्वाइनिंग के बाद, कोई ऐसा दिन रहा हो? मुझे लगता है शायद ज्यादा ही रहे होंगे बट कोई एक ऐसा बताइए हमें इंसिडेंट.
0: देखिए बहुत सारे इंसिडेंट आज के जमाने में फनी लगती है लेकिन उस समय तो जान से आई रहती है. एंड आई स्पेशली रिमेम्बर वन इंसिडेंट, हमारे उस समय आकाशवाणी के प्रोग्राम का लोग काफ़ी आया करते थे, दर्शक भी बहुत होते थे. एंड हम लोग को समझिए आज के ज़माने में शायद आप लोग इसको सोच भी नहीं पाएंगे, 2 मिनट का भी ब्रेक डाउन होता था. दैट वॉज टेकन एज अ मेजर ब्रेक डाउन एंड द पर्सन जिसके अंतर्गत हुआ है उसको वो करना पड़ता था कि एक्सप्लेन करना पड़ता था कि क्यों मेजर ब्रेक डाउन, बेबी इट विल गो टू योर CR ऑल्सो.
1: बहुत स्ट्रिक्ट
0: हुआ करते थे. तो एक बार हमारे और आकाशवाणी फेमस है अपने बिल्कुल टाइम से प्रोग्राम स्टार्ट करने पर, एक बार हमारे यहाँ पे इलाहाबाद में आए थे, एक गायक आए थे रात के टाइम में करीब 8 बजे हम लोग की प्रोग्राम शुरू होने वाला था संगीत का बाहर एक ऑडिटोरियम में, सारे लोग बैठे हुए थे. अचानक उन्होंने रात 8 बजे डिमांड कर दी मुझे गरम दूध चाहिए और पान चाहिए, उसके बगैर मैं जाऊंगा नहीं स्टेज पे. हम लोग उस समय मतलब दौड़ रहे हैं कि कहाँ से गरम दूध मिलेगा, बिल्कुल बिकॉज ऑडियंस वॉज देयर एंड वी हैड टू स्टार्ट द प्रोग्राम. सो उस समय जान सांसत में आई होती है.
1: ड्यूरिंग द प्रोग्राम?
0: यस इट वाज ड्यूरिंग. यस
1: 90 ईयर्स हमारे आकाशवाणी के कंप्लीट हो रहे हैं, होने वाले हैं जल्दी ही. तो इन 90 ईयर्स का जो पूरा टोटल मैसेज है वो आप क्या देना चाहेंगे जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनके लिए, जो आरजेइंग के फील्ड में आना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड में आना चाहते हैं या आकाशवाणी से किसी भी तरह से जुड़ना चाहते हैं ब्रॉडकास्टिंग में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
0: देखिए मैं तो यही बोलूंगी कि यू कैन कम एंड लिव योर ड्रीम्स, क्योंकि तकनीक एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको अपने भीतर की जो प्रतिभा है या जो भी आप करना चाहते हैं आप उसको बिल्कुल दिखा सकते हैं. और सबसे बड़ी बात है कि ब्रॉडकास्टिंग का एक स्कोप है कि इतने सारे लोगों को इफेक्ट करने की क्षमता रखता है
1: जी.
0: तो मास कम्युनिकेशन इसीलिए कहा जाता है और आज की डेट में जहाँ भी कम्युनिकेशन आज बहुत इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप तो जानते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि अगर किसी में वो पैशन है और कुछ करना चाहता है, अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट करना चाहता है या कुछ उस तरह की प्रतिभा है तो बिल्कुल आना चाहिए इसमें.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प.
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं. अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें.
1: एक सवाल मेरा और है आपसे, आप जब आपने ज्वाइन किया या आपके टाइम पर मास्कॉम इतना पॉपुलर नहीं था एज अ सब्जेक्ट एज अ करियर?
0: अगर सच बताऊँ वास्तव में आप ठीक कह रहे हो सर, मास कम्युनिकेशन वाज नॉट अ वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट. लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखा देती है.
1: बिल्कुल.
0: एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट इन दैट वे बिकॉज आई कम फ्रॉम प्रयागराज इलाहाबाद एंड इट वॉज अ वेरी वेरी वाइब्रेंट आर्टिस्टिक सीन देयर.
1: ट्रू.
0: क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे और
1: नेचर से जुड़े हुए हैं।
0: हाँ, नेचर से भी, और बहुत सारे फंक्शन हुआ करते थे आपके, ड्रामा कॉम्पिटिशन से लेके म्यूजिकल फेस्टिवल, तो

0: फैमिली में मेरे पेरेंट्स एज वेल एज मेरे माय इन लॉज देवर इन टू दैट फील्ड, तो मुझे बहुत कुछ एक्सपोजर मिला उनकी वजह से, ये सब देखने का और सुनने का और जानने का. तो एक वो आप कह सकते हैं नेचुरल प्रोसेस में वो धीरे धीरे धीरे धीरे
1: रमता गया
0: आप जानते गए. प्लस हमारी नौकरी तो है ही, तो प्रोफेशन में भी जब लोग फील्ड स्टेशन में रहते हैं तो यू आर सपोज टू डू, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए डायरेक्टरेट या बड़ी जगह में आपको स्पेसिफिक काम होते हैं, लेकिन जब आप स्टेशन पे जाते हैं आपको मतलब कहते हैं ना कि ईंटे से लेके और पूरा स्टूडियो तक सब देखना पड़ता है.
1: मल्टीटास्क. वही आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि पहले क्या, अब तो स्पेसिफिकली हमको एक टास्क असाइन कर दिया जाता है ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस समय तो यही चलता था और मुझे लगता है सब कुछ आना बहुत अच्छा होता था कई बार. तो वो सारी चीजें मल्टीटास्किंग आपको यहाँ आकर सीखने को मिली या आप में पहले से ही इतनी काबिलियत थी कि आप मल्टीटास्किंग करने के लिए तैयार थी?
0: नहीं नहीं, पहले से तो नहीं पता होता है किसी को भी, फ्रॉम जस्ट रॉ फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज. तो आई एम वेरी थैंकफुल दैट प्रोफेशन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मतलब क्योंकि मुझे आते ही इंस्टॉलेशन ऑफिसर बना दिया. हमारे झूसी में एक हाई पावर ट्रांसमीटर इंस्टॉल हो रहा था और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि किस तरह से चीज़ें होती हैं या किस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है. तो माई बॉस टॉट मी और बहुत डांट के सिखाते थे कि ईंटों को समझना सीखो, ये ऑरेंज वाली ईंटें होती है, कच्ची ईंटें होती है, वो नहीं लगनी चाहिए.
1: आजकल स्कूल्स में भी डांट बंद हो गई हो, ऑल्दो डांटना इज वेरी गुड, थोड़ा हम
0: बहुत
1: चीजें सीख लेते थे वो अच्छी बात थी, थोड़ा डर होना जरूरी है. बिल्कुल. अब हम आते हैं, हमने इतनी सारी बातें कर ली है, मैं एक चीज और पूछ लू फिर हम आखिरी आपसे बात करते हैं कि इन सारे प्रोसीजर के दौरान क्या कभी आपको ऑन एयर जाने का भी मौका मिला, कभी ऐसा हुआ? क्योंकि मुझे लगता है मल्टीटास्किंग में वो भी शामिल है.
0: जी हाँ, मुझे कई बार मिला है बिकॉज आई वॉज अ स्टेशन इंजीनियर इन दूरदर्शन शिमला. तो वहाँ पे जैसे बड़े शहरों से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि गुवाहाटी या इवन शिमला में भी दूरदर्शन का आकाशवाणी का तो बहुत लोग सुनते थे और बहुत उसमें चार्म था लोगों का. तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते थे कि कहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है. तो टेक्निकल एंड प्रोग्राम रिलेटेड चीज़ों में हमारे स्टेशन डायरेक्टर और मुझे कई बार वो व्यूअर्स के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हम लोग को बैठना पड़ता था.
1: मुझे थोड़ा सा एक एग्जांपल देके यहाँ पर बताइए प्लीज.
0: ऐसे तो रैंडम कुछ याद नहीं, लेकिन हाँ उस समय थोड़ा सा क्योंकि आप बैठे हैं जनता के सामने और जनता पूछ रही है, तो यू हैव टू बी वेरी हम्बल और अलर्ट ऑल्सो. जैसे हमारे यहाँ पे वो जनरेटर चलता था एंड यू नो जनरेटर टू ट्रांसमीटर तक ऑन करने में थोड़ा सा गैप चला जाता है, इट टेक्स टाइम बिकॉज एक के बाद एक चीज़ें ऑन होती हैं और उसी तरह से. तो आम लोगों को नेचुरली ये समझ में नहीं आता है, तो उनको गुस्सा आता था कि हम ये प्रोग्राम देख रहे थे और बीच में से ये कट गया और इतना सारा मेरा मिस हो गया और ये हो गया वो हो गया. तो उनका गुस्सा भी वाजिब है, हम कुछ नहीं कर सकते. लेकिन वहाँ पे ये भी फैक्ट है कि टेक्निकली अगर मान लीजिए लाइट गई है, जनरेटर आपका तुरंत ही ऑन हुआ है, लेकिन सारे सिस्टम को ऑन होने में देयर वुड बी अ डिले, तो उसको आपको थोड़ा सा समझाना पड़ता था, बोलना पड़ता था अच्छे से कि हम लोगों ने अपनी तरह से कोशिश की, ये इनेविटेबल है.
1: हमारे पास अभी समय की कमी है तो हमको अब जल्दी से इसको रैप अप करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी क्योंकि हमने सिक्के के एक पहलू की बात करी है, हमने आपकी ड्यूटीज की बात कर ली है, अब दूसरा पहलू आता है. हमने सुना है आप बहुत मधुर आवाज की मलिका है और क्लासिकल सिंगिंग में ट्रेंड है, तो दो लाइन जो भी आपको पसंद हो जाए.
0: मुझे ऐसे ही रैंडमली कुछ याद आ रहा है, एक बहुत पहले मैंने आई थिंक व्हेन आई वाज इन स्कूल मैंने ये सीखा था, एक भजन है

0: आपकी इस गायकी ने आज के हमारे पॉडकास्ट में ना दिन में ही चार चांद लगा दिया। ऑल्दो हमारी लाइट्स काम कर रही हैं, लेकिन इसने जो रोशनी बिखेरी है उसके क्या ही कह रहे हैं।
1: ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया।
0: थैंक यू सो मच।
1: चलिए, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच टू यू टू, बिकॉज आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे लिसनर्स तक, हमारे व्यूअर्स तक पहुँचाई है, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।
1: और आकाशवाणी अपने 90 साल संपूर्ण करने जा रहा है, उस बारे में आकाशवाणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे लिए तो आकाशवाणी हमेशा से ही दिल के करीब रहा है और आशा करती हूँ कि ये उत्तरोत्तर और प्रगति करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। बहुत धन्यवाद।
0: आज के लिए हम इजाजत देते हैं आपसे।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू सो मच।
0: और साथ के साथ हमारी पूरी टीम जो यहाँ पर काम करती है उसको भी शुक्रिया कहना चाहते हैं हम, क्योंकि उनके बिना ये पॉडकास्ट अधूरा है। शालिनी चाहती है आपसे इजाजत। नमस्कार।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
4: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
5: गाने बाजू उन्हें रेडियो सुनो 107 FM रेनबो शांत सुरे सारा दिन।
6: মন কি বাত জনগণের কথা, সকলের নিজের কথা, কিছু লড়াইয়ের কাহিনী, কিছু সাফল্যের আখ্যান, অব্যক্ত ঐতিহ্যের গাথা, নতুন ভারতবর্ষের আশা, মাসের শেষ রবিবারের অপেক্ষায় থাকা, মলয় পর্বতের কোল থেকে বিন্ধ্যাচলের পাদদেশ পর্যন্ত, ব্রহ্মপুত্র নদের তীর থেকে হিমালয় পর্বতমালা পর্যন্ত পৌঁছে যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মনের কথা, মন কি বাত। মন কি বাত অনুষ্ঠানটি শোনা যাবে আকাশবাণী কলকাতার সবকটি প্রচার তরঙ্গ সহ প্রসার ভারতীর OTT প্ল্যাটফর্ম ওয়েভসে 31 মে ঠিক সকাল 11টায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মূল অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারের ঠিক পরেই মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বেতার ভাষণের বাংলা রূপান্তর শোনা যাবে আকাশবাণী কলকাতা।

0: 90s Insta Choice. 90s Insta Choice.
1: 69% वोट पे आज के सॉन्ग नंबर 1 हो गेलो ये हसीन वादिया फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ रोजा.
2: सॉन्ग नंबर 1.